दोस्तों भोजन एफएम नमत अशारिया सिफर रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी हूं भोजन रूजियो पनिन पसंदीद बात।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

थम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता। अंबाले का अपना रेडियो, सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर घर घर की आवाज रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम सुनहरे पल एपिसोड 6। आज का कार्यक्रम आधारित है पार्श्व गायक सुमन कल्याणपुर पर। प्रस्तुत करेंगे आरजी किरनी। रिकॉर्ड किया राहुल अल्यान ने। एडिट व निर्देशन भारत सोपोरी।
3: आप सुन रहे हैं 90.0 FM MHz पर रेडियो वितस्ता। पेश है कार्यक्रम सुनहरी पल। सभी दोस्तों को किरनी का प्यार भरा नमस्कार। और आज के इस खास प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी आवाज की जिसे सुनते ही दिल में एक सुकून महसूस होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुमन कल्याणपुर जी की। उन्होंने अपने सुरीले गानों से हमेशा हमें बहलाया है और आज हम उनके सफर को सुरों के जरिए याद करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं उनके जीवन के पहले पड़ाव से।

सुमन कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को ढाका बांग्लादेश तब पूर्वी बंगाल में हुआ था। वह बाद में अपने परिवार के साथ मुंबई चली आई जहां उन्होंने संगीत की शिक्षा प्राप्त की। बचपन से ही सुमन को संगीत का शौक था। उन्होंने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली और शंकर राव सुप्रे और उस्ताद अब्दुल रहमान खान से संगीत का गहन अध्ययन किया। 1954 में सुमन ने अपनी गायन करियर की शुरुआत की। उनकी पहली फिल्म थी मंगू और पहला गाना कहीं दीप जले कहीं दिल था, जिसके बाद उनकी पहचान बनी।

सुमन की आवाज को मधुरता और शुद्धता के लिए जाना जाता है। उनकी आवाज को लता मंगेशकर के सम्मान माना जाता था, लेकिन उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। उन्होंने कई हिट गाने दिए, जैसे न तुम हमें जानो, दिल एक मंदिर है और तुमसे ही हसी मुलाकात हो गई। इन गीतों ने उन्हें घर घर में लोकप्रिय बना दिया। सुमन को अक्सर लता मंगेशकर के साथ तुलना की जाती थी। उनके गायन का तरीका और आवाज की टोन लता जी के सम्मान थी, जिससे उन्हें दूसरी लता भी कहा गया। सुमन ने एसडी बर्मन, नौशाद, शंकर जयकिशन और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे प्रसिद्ध संगीतकारों के साथ काम किया। उनके साथ की गई संगीत रचनाएं आज भी सराही जाती है।

सुमन की गायन शैली शास्त्रीय संगीत पर आधारित थी, लेकिन वे अन्य शैलियों में भी निपुण थी। उनकी गायकी में एक सरलता और सहजता थी जो श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देती थी। सुमन ने हिंदी के अलावा मराठी, गुजराती, कन्नड़ और बंगाली भाषाओं में भी गाने गाए। उन्होंने क्षेत्रीय सिनेमा में भी अपनी आवाज का जादू बिखेरा।

सुमन कल्याणपुर का विवाह राम कल्याणपुर से हुआ था, जो कि एक व्यवसायी थी। वह अपने पारिवारिक जीवन और संगीत करियर के बीच संतुलन बनाए रखने में सफल रही। सुमन ने लगभग 4 दशकों तक हिंदी फिल्म संगीत में सक्रिय भूमिका निभाई। उनकी लोकप्रियता 1950 से 1970 के दशक में अपने चरम पर थी, लेकिन वे 1980 के दशक में भी गाती रही।

आप सुन रहे हैं 90.0 FM मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता। अभी जारी है कार्यक्रम सुनहरे बाल। 1980 के दशक में सुमन कल्याणपुर ने धीरे धीरे फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली और अपनी पारिवारिक जीवन पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने लाइमलाइट से दूर एक शांत और साधारण जीवन चुना। फिल्मों के अलावा सुमन कल्याणपुर ने रेडियो पर भी कई कार्यक्रमों में भाग लिया और लाइव परफॉर्मेंस दी। वह संगीत कार्यक्रमों में अपनी मधुर आवाज से दर्शकों को मंत्र मुग्ध करते रहे।

सुमन कल्याणपुर ने अपने समकालीन गायकों के बीच भी सम्मान प्राप्त किया। उनकी सरलता और संगीत के प्रति समर्पण ने उन्हें संगीत जगत में एक आदरणीय स्थान दिलाया। उन्होंने लाइमलाइट से दूर रहना पसंद किया और मुंबई में एक शांत जीवन बिता रही है। हाल के वर्षों में वे सार्वजनिक रूप से बहुत कम दिखाई दी है और ज्यादातर अपने परिवार के साथ समय बिताती है। उनके फैंस उन्हें आज भी उनकी मधुर आवाज और अविस्मरणीय गीतों के लिए याद करते हैं। सुमन कल्याणपुर को उनके योगदान के लिए कई पुरस्कारों से नवाजा गया। हालांकि उन्हें कई बार मुख्य धारा में उतनी पहचान नहीं मिली जितनी की हकदार थी, फिर भी संगीत प्रेमियों के दिलों में उनकी खास जगह है।

दोस्तों, सुमन कल्याणपुर जी के गाने आज भी हमारे दिलों में एक नया रंग भर देते हैं। उनकी आवाज में एक ऐसी मिठास थी जो कभी पुरानी नहीं होती। उन्होंने अपने सुरों से हमेशा हमें प्रेरित किया, हमें प्यार सिखाया और जिंदगी की हर पल को खूबसूरत बनाया, चाहे वो उनके सोलो गाने हो या ड्यूट्स। उन्होंने हर तरह के गानों में अपनी छाप छोड़ी है। उनका सफर किताबों के पन्ने जैसा है, जिसमें हर पंक्ति एक याद है। आज के प्रोग्राम के माध्यम से हमने उनकी यादों को ताजा किया। आप सभी का शुक्रिया जो आपने अपने वक्त दिया और सुमन जी के सुरों का लुत्फ उठाया।

इसके साथ ही आज का ये खास प्रोग्राम यही समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए सुर के साथ। तब तक के लिए अलविदा और सुरीली यादों के साथ खुश रहिए। और इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरे पल एपिसोड 6। आज का कार्यक्रम आपने सुना पार्श्व गायक सुमन कल्याणपुर के ऊपर आधारित। प्रस्तुत किया आरजे किरनी ने, रिकॉर्ड किया राहुल अल्यान ने, एडिट व निर्देशन भारत सोपोरी। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाए एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मेरा नाम सुनील है, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरे पास 12 एकड़ जमीन है। अब की बार मैं टोटल नुकसान मानता हूँ मौसम परिवर्तन का, यानी कीटों के कारण लगभग 50% नुकसान हुआ है। ये फसल बीमा स्कीम बहुत ही बढ़िया स्कीम है। पिछली बार किसानों की 100% कोटम खत्म हो गई थी, तो कंपनियों ने बीमा दिया है, किसानों को कुछ ना कुछ भरपाई होगी जी। मैं तो चाहता हूँ हर किसान को बीमा करवाना चाहिए।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आवाज की दुनिया के दोस्तों को नरेश शर्मा का एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से। दोस्तों, नियत बड़ी होती है या दिल बड़ा होता है, आइए आप ही फैसला कीजिए। मैं आपको एक प्रचलित कथा सुनाता हूं जो मुझे कहीं से पढ़ने को मिली थी। पुरानी साड़ियों के बदले बर्तनों के लिए मोल भाव करती संपन्न घर की महिला ने अंत में दो साड़ियों के बदले एक टब पसंद किया। नहीं दीदी, बदले में तीन साड़ियों से कम नहीं दूंगा। बर्तन वाले ने टब को वापस अपने हाथ में लेते हुए कहा, अरे भैया, एक एक बार की तो पहनी हुई है, बिल्कुल नई जैसी, एक टब के बदले में दो ना, ये दो भी ज्यादा हैं, मैं तो फिर भी दे रही हूं। नहीं नहीं, तीन से कम में नहीं हो पाएगा, वो फिर बोला। एक दूसरे को अपनी पसंद के सौदे पर मनाने की इस प्रक्रिया के दौरान गृह स्वामिनी को घर के खुले दरवाजे पर एक सामने गुजरती हुई अर्धविक्षिप्त महिला दिखी और उस महिला ने उस गृह स्वामिनी से भोजन मांगा। आदतन हिकारत से उठी महिला की नजरें उस महिला के कपड़ों पर गई। अलग अलग कतरनों को गांठ बांधकर बनाई गई उसकी साड़ी उसके युवा शरीर को ढकने का असफल प्रयास कर रही थी। एक बार की उसने मुंह बचकाया, पर सुबह सुबह का याचक है ये सोचकर अंदर से रात की बची हुई दो रोटियां मंगवाई। उसे रोटी देकर पलटते हुए उसने बर्तन वाले से कहा, तो भैया क्या सोचा, दो साड़ियों में दे रहे हो या मैं वापस रख लूं? बर्तन वाले ने इस बार चुपचाप टब पकड़ाया और अपना गट्ठर बांधकर बाहर निकल गया। अपनी जीत पर मुस्कुराती हुई महिला दरवाजा बंद करने को उठी तो सामने नजर पड़ी। गली के मुहाने पर बर्तन वाला अपना गट्ठर खोलकर उसकी दी हुई साड़ियों में से एक साड़ी उस अर्ध विक्षिप्त महिला को दे रहा था। बर्तन वाला तीन की जगह दो साड़ी में सौदा कर गया और उन दो में से भी एक उसने जरूरतमंद की मदद में दान कर दी। उसका बड़ा दिल और अपनी हैसियत देखकर हाथ में पकड़ा हुआ टब अब उसे चुभता हुआ सा महसूस होने लगा। कुछ देने के लिए हैसियत नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए। आपके पास क्या है और कितना है ये कोई मायने नहीं रखता, आपकी सोच और नियत का सर्वप्रिय होना आवश्यक है। नमस्कार, धन्यवाद, जय भारत, जय हिंद।

0: यह है रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का। आइए सुनते हैं एक विशेष कार्यक्रम गजल गायक जगजीत सिंह के ऊपर, और पेश करने जा रहे हैं रमेश मरहटा।
1: हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। मखमली आवाज के मालिक जगजीत सिंह नहीं रहे।
2: चिट्ठी न कोई संदेश,
1: ऐसे हिजर के मौसम कब कब आते हैं, तेरे अलावा याद हमें सब आते हैं। जगजीत का जन्म 8 फरवरी 1941 को राजस्थान के गंगानगर में हुआ था। उनके वालिद मोहतरम सरदार अमर सिंह धमानी भारत सरकार के एक विभाग पीडब्ल्यूडी में सरकारी कर्मचारी थे। जगजीत का परिवार पंजाब के रोपड़ जिले के दल्ला गांव का रहने वाला है। मां थी बचन कौर। जगजीत के बचपन का नाम जीत था। बाद में ज्योतिषों के कहने पर उनका नाम जगजीत पड़ गया। शुरुआती तालीम गंगानगर के खालसा स्कूल में हुई और बाद में पढ़ने के लिए आप जलंधर आ गए। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से आपने इतिहास में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया। सन 1965 में आप मुंबई आ गए और पेइंग गेस्ट के तौर पर मुंबई शहर में ही रहने लगे और यहाँ विविध भारती में जिंगल और विज्ञापन गाकर रोजी रोटी कमाने का जरिया पैदा किया। सन 1976 में पहला हिट एल्बम पेश किया और इन 1967 में एक रिहर्सल के दौरान आपकी मुलाकात चित्रा से हुई और 2 साल के बाद यानी 1969 में आप दोनों ने शादी करने का फैसला किया। दोनों साथ मिलकर

0: वो छोटी सी रात वो लंबी कहानी।
1: उनकी गजल गायकी चिनाब के पानी से उठती हवा की हल्की महक का एहसास कराती है। बेशक जहलम के उस पार गजल गायकी की एक बेशकीमती दुनिया बसती रही है, पर वहां भी इस बात का इल्म रहा है कि दूसरी छोर पर गजल को बहुत करीने से, संजीदा जज्बात से सजाया

गजल ही नहीं, दोहे, कुछ लोकगीत और भजनों में भी जगजीत ने अनोखा समर्पण दिखाया। बेगम अख्तर ने गाया और बखूबी गाया। मेहदी हसन को तो लोगों ने ऊंचे तख्त पर ही बिठा दिया। गुलाम अली हर महफिल की शान हो गए, पर जगजीत को यह दर्जा मिला कि उनकी वजह से गजल लोगों में आम हो गई।

पंजाब की धरती में शायद नदियां भी सुर से बहती हैं। जगजीत ने वहां की खुशबू को पहचाना, शौक मिजाज को समझा, वहां के रंगों को जाना और जगजीत बचपन से ही गाने लगे। आपकी गजल हर दिल को छूती है। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। शास्त्रीय संगीत की तालीम उन्होंने उस्ताद जमाल खान से ली। जगजीत के पिता एक साज बजाया करते थे और उस साज को दिलरुबा कहते हैं। घर में भले ही संगीत का माहौल नहीं था, पर उनके पिता को संगीत का शौक था। जगजीत के पिता ने ही जगजीत को संगीत की तालीम दिलानी शुरू की। बाद में उनका रुझान इस तरफ हो गया और आप सीखने लगे। जगजीत ने राजस्थान के श्री गंगानगर के पंडित छगनलाल शर्मा को अपना गुरु बनाया और लगभग 2 साल तक संगीत की तालीम हासिल की।

1990 में एक सड़क हादसे में विवेक उनका बेटा जो 21 साल का था दुनिया से चल बसा। उनकी गोद ली बेटी मोनिका ने खुदकुशी कर दुनिया, जगजीत और चित्रा को अलविदा कहा। जगजीत अक्सर कहा करते थे, संगीत के लिए समर्पण और रियाज की जरूरत होती है। जब तक मैं जिंदा हूं गजल भी जीवित है। बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी।

अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह पर एक कार्यक्रम, प्रस्तुतकर्ता रमेश मरहटा। यह है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

थम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, अंबाले का अपना रेडियो। सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

0: पहलो और गीत का आज का अंक लेकर मैं किरणी फिर से हाजिर हूँ। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सावन के महीने के बारे में।
1: बन्ना रे बागा में झूला डाल्या, बन्ना रे बागा में झूला डाल्या।
0: हिंदुओं के लिए सावन का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण महीना होता है। इसे भगवान शंकर का महीना भी कहते हैं। मान्यता है सावन महीने में भगवान शिव और माता पार्वती धरती लोक पर निवास करते हैं। उनको खुश करने के लिए लोग पूजा पाठ करते हैं। सावन का महीना बारिश का भी होता है और मौसम बहुत ही सुहावना और ठंडा रहता है। गर्मी से राहत के लिए लोग घूमने का आनंद लेते हैं और खुशी से झूम उठते हैं।

0: सावन के महीने में बहुत अधिक बारिश होती है।
1: ये मौसम भीगा भीगा है, हवा भी ज्यादा ज्यादा है।
0: और ये किसानों के लिए भी प्रिय महीना माना जाता है। हर तरफ हरियाली छा जाती है। किसानों को भी फसल के लिए बारिश की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। बारिश से धरती मानो स्वर्ग सी लगती है और सुंदर दिखाई देती है।

सावन का महीना खुद में एक विशेषता लिए हुए है। ये प्रकृति को तो सराबोर करता ही है, साथ ही मन को भी भिगो देता है। सावन का ये महीना मनुष्य पशु पक्षी सबके लिए खुशहाल मौसम लेकर आता है। आज शाम जब बरसा सावन, भीगा अपना तन मन सारा।

सावन के महीने में महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार भी पड़ते हैं। उनमें से रक्षाबंधन और हरियाली तीज मुख्य त्योहार है। हरियाली तीज सावन महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाई जाती है। महिलाएं अपनी पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। सुहागन महिलाएं 16 श्रृंगार करके शिवजी और माता पार्वती की पूजा करती हैं। आप सबके लिए तीज के अवसर पर ये प्यारा सा गीत।

तीज का त्योहार हो और मेहंदी ना हो। मेहंदी के बिना तीज का त्योहार या सावन अधूरा है। तीज के दिन मेहंदी लगाने का भी एक विशेष महत्व है। मेहंदी का इस्तेमाल शरीर की गर्मी दूर करने के लिए किया जाता है। माना जाता है हरा रंग, जो मेहंदी का रंग है, कई रोगों के रोकथाम में भी कारगर होता है।

तीज के दिन महिलाएं हरी चूड़ियां हरे रंग का पोशाक पहनकर झूला भी झूलती है, क्योंकि जो हरा रंग है ये प्रकृति का रंग होता है और हरा रंग अखंड सौभाग्य का भी प्रतीक है। 16 श्रृंगार करके लोग गीत अथवा तीज के गीत गाकर उत्सव भी मनाती हैं, खुशी से झूम उठती हैं और मन मोर नाच उठता है।

सावन महीने में दूसरा महत्वपूर्ण त्योहार जो है वो रक्षाबंधन का आता है। भाई बहन के प्यार का प्रतीक है रक्षाबंधन का त्योहार। बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है और सुखी जीवन की प्रार्थना करती है।

रक्षाबंधन सबसे सुखद और सार्थक त्योहारों में से एक है। ये भाइयों और बहनों के बीच के बंधन को मजबूत करता है।

न मांगे वो धन और दौलत, न मांगे उपहार, चाहत बहन की इतनी कि बस बना रहे प्यार। गम न कोई पास में आए, खुशियाँ मिले हजार, न मांगे वो धन और दौलत, न मांगे उपहार। इसके साथ ही आज के पहलो और गीत का समय समाप्त होता है। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत।

0: करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम इनसे मिलिए एपिसोड 10। आज के आमंत्रित मेहमान है वैदिक मैथमेटिक्स एक्सपर्ट आशीष गुप्ता, रिकॉर्ड किया राहुल अल्यान ने, एडिट निर्देशन और प्रस्तुतकर्ता भारत सोपोरी।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी, लेके आया हूं कार्यक्रम इनसे मिलिए का एक और अंक। अंकों की बात करूं तो गणित का ध्यान आता है, तो श्रोताओं क्यों ना आज गणित की ही बात करें। गणित हमारे वेदों में भी पढ़ा और पढ़ाया गया है। वैदिक गणित की खोज जगत गुरु शंकराचार्य श्री भारतीय कृष्ण तीर्थ जी ने किया। वेदों का अध्ययन करने के बाद उन्होंने 7 साल लगाए और 16 सूत्र जो लिखे थे उन पर काम किया, जिन्हें बाद में वैदिक गणित कहा गया। क्या है ये वैदिक गणित, मुझे भी जिज्ञासा हो रही है, क्या आपको हो रही है? और श्रोताओं क्या हमारे बच्चों को भी ये जिज्ञासा हो रही है? इसीलिए आज हमने आमंत्रण दिया है एक वैदिक मैथमेटिशियन को, जिनको लोग अब वैदिक सर से ही जानते हैं। वैदिक सर का नाम है श्री आशीष गुप्ता जी, जो एक सर्टिफाइड इंटरनेशनल ट्रेनर है वैदिक मैथ्स के। आशीष जी, आपका स्वागत और अभिनंदन इस कार्यक्रम इनसे मिलिए में।
3: बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज के कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया। और आज हम जिस टॉपिक को लेकर बैठे हैं वैदिक मैथमेटिक्स, तो कहीं ना कहीं बहुत ही रोचक विषय है और मेरे दिल के बहुत करीब भी है। तो सर अगर आपकी इजाजत हो तो शुरू कर लेते।
2: जी जी, हमारे श्रोता आपके बारे में जानना चाहेंगे, कहाँ आपका जन्म हुआ, कहाँ आपकी प्राथमिक शिक्षा हुई और आज आपकी दिनचर्या क्या रहती है?
3: सर मेरा जन्म जो है वो चंडीगढ़ में हुआ और उसके बाद मेरी जो प्राथमिक शिक्षा है वो अलग अलग जगह पर रही, बिकॉज मेरे जो पिताजी थे वो गवर्नमेंट सर्विस से थे, तो जैसे उनकी पोस्टिंग होती थी मुझे भी उनके साथ कई बार शिफ्ट करना पड़ा। शुरुआती शिक्षा मेरी बराड़ा एक गांव है जहां पर शुरुआती शिक्षा मेरी 5वीं कक्षा तक हुई
2: जी।
3: उसके बाद हम लोग अंबाला कैंट आए और यहाँ पर मेरी आगे की शिक्षा चली, और इसके बाद कुछ समय मैंने चंडीगढ़ में भी शिक्षा ग्रहण की और वहां से मुझे वापस मैं अंबाला आया। अपनी ग्रेजुएशन मैंने यहाँ कंप्लीट की। इसके बाद मैंने सीए की पढ़ाई भी की कुछ समय तक, लगभग 5 साल मैंने सीए की पढ़ाई में लगाए
2: जी।
3: और उसके बाद फिर मैंने काम करना शुरू किया सर
2: जी।
3: शुरुआती दौर में मैंने टीचिंग का करियर ऑप्ट किया और बच्चों को ट्यूशंस देना स्टार्ट किया
2: जी।
3: और ट्यूशंस देते देते ही मैंने ये चीज रियलाइज की कि बच्चों को कहीं ना कहीं गणित के अंदर बहुत समस्याएं झेलनी पड़ती है, जो मैंने भी अपने बचपन में कहीं ना कहीं फेस की थी
2: जी।
3: तो वहां से मुझे कहीं ना कहीं एक अंदर से प्रेरणा मिली थी कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूं या कुछ ना कुछ ऐसा सीखूं जो मेरे लिए और आगे बच्चों के लिए भी बहुत फायदेमंद हो, क्योंकि जो समस्याएं मैंने अपनी एजुकेशन में झेली थी मैं चाह रहा था कि वो बच्चे ना फेस करें। तो इसी संकल्प को लेकर मैंने वैदिक मैथमेटिक्स सीखा और अभी मुझे लगभग 7 साल हो गए हैं वैदिक मैथमेटिक्स की लाइन में, और आज भी मैं कहूंगा कि मैं सीख रहा हूँ, क्योंकि एक अच्छा शिक्षक हमेशा एक लर्नर की एप्टीट्यूड रखता है, एक सीखने का उसके अंदर हमेशा से जिज्ञासा रहती है।
2: हम इस कार्यक्रम को आगे चलाते हैं, आपसे पहला प्रश्न करता हूँ। आज का विषय है वैदिक मैथ या वैदिक गणित, सबसे पहले हमें विस्तार में बताइए वैदिक मैथ क्या होता है, क्या ये प्राचीन प्रणाली मानी जाती है, इसका इतिहास क्या है और क्या ये हमारे धर्म के साथ भी जुड़ा है?
3: ये बहुत ही अच्छा सवाल है सर। वैदिक गणित जैसे नाम है इसका, तो इसके जो सूत्राज हैं ये हमारे वेदाज में से ही लिए गए हैं
2: जी।
3: जैसे कि सब जानते हैं कि हमारे 4 वेदाज हैं
2: जी,
3: ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। इसमें से जो अथर्ववेद है उसी में से वैदिक गणित के सूत्राज को लिया गया है, और आपने बहुत खूबसूरती से शो के स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था कि कैसे भारती कृष्ण तीरथ जी ने लगभग 7 साल इसके ऊपर रिसर्च किया और इसके सूत्रास को एक्सप्लेन करने में हमारी मदद की। और आज जो हम वैदिक गणित पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं वो उन्हीं की देन है, तो उन्हें फादर ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं और इन सूत्रास के ऊपर ही सारा वैदिक मैथमेटिक्स हमारा टिका हुआ है और आज की तारीख में ये काफी लोगों में प्रचलित भी होता जा रहा है।
2: आपसे मैं इसके साथ ही जुड़ा हुआ एक प्रश्न करना चाहूंगा, आपने वैदिक गणित की जो बात की, अगर ये वेदास के साथ जुड़ा है, इसके साथ हम स्कूलों में क्यों नहीं जुड़े हैं, हमें स्कूलों से वैदिक गणित के बारे में क्यों जानकारी नहीं है?
3: जी, बहुत ही अच्छा सवाल है और मेरा भी ये कहीं ना कहीं सवाल रहा था जब मैंने इसको सीखना शुरू किया कि हमने अपने स्कूल टाइम में ये चीज क्यों नहीं सीखी। दरअसल समस्या सर कहाँ होती है, जब भारत पर अंग्रेजों ने शासन करना शुरू किया तो अंग्रेजों ने पाया कि भारत का जो गुरुकुल शिक्षा पद्धति है वो बहुत ही मजबूत है और ये कहीं ना कहीं इस हमारे जो कल्चर की नींव है, तो उन्होंने सोचा कि अगर हमें भारत को गुलाम बनाना है तो सबसे पहले इनकी शिक्षा व्यवस्था हमें खत्म करनी होगी। तो उसी कड़ी में अंग्रेजों ने क्या किया, उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के स्कूल बनाने शुरू किए, जहां पर हमारे जो वेदास थे पढ़ाई जाते थे उनको उन्होंने बंद करना शुरुआत कर दिया।
2: वो पिछड़ गए समय के साथ, वो पिछड़ गए।
3: जी जी जी, जी। तो समय दर समय क्या हुआ, आने वाले समय में जो हमारे जो कल्चर था हमारा वैदिक मैथमेटिक्स, वैदिक गणित, ज्योतिष, इन सभी सब्जेक्ट्स को क्या हुआ, लोगों ने डिसरिगार्ड करना शुरू कर दिया। लेकिन आज का दौर क्या है सर, आपका देखिए जनरेशन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जनरेशन है, कोई भी चीज छुपी हुई नहीं रह सकती, कभी ना कभी तो वो सामने आएगी,
2: सब कुछ अवेलेबल,
3: सब कुछ आएगा। और ऐसे ही वैदिक मैथमेटिक्स ने भी, क्योंकि एक ऐसी कला है जो छुप नहीं सकती, दोबारा से रिवाइव हुआ कला ये और अब लोग इसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं सर।
2: अब मैं भी आपको कार्यक्रम में वैदिक सर ही बुलाऊंगा, विशेष गुप्ता जी
3: जी।
2: और वैदिक सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि वैदिक मैथ्स के सिद्धांत क्या है और परंपरागत गणित से ये अलग कैसे है, क्या ये आज के शिक्षा प्रणाली में प्रयोग किया जा सकता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि इस समय बच्चे जो है वो एग्जाम्स के लिए तैयार हो चुके हैं, एग्जाम्स दे रहे हैं, तो मैं ये चाहूंगा कि जितने भी श्रोता हमें सुन रहे हैं, अगर उन बच्चों को कोई आपके प्रश्न से कोई उत्तर मिल जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी जो जिम्मेदारी है वो पूरी होगी।
3: जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल है। वैदिक गणित के अगर सिद्धांतों की हम बात करें तो जैसे आपने बताया कि ये 16 सिद्धांत जो है मुख्य तौर पर यही काम करते हैं वैदिक मैथमेटिक्स
2: जी।
3: और जो ये 16 सिद्धांत हैं ये वही सिद्धांत है जिन पर हमारा ब्रेन काम करता है। तो जब हम वैदिक मैथमेटिक्स किसी बच्चे को सिखाते हैं तो इसमें कुछ गणनाएं ऐसी होती हैं जो आप बिना पेन पेपर के भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन उन गणनाओं को प्रोसेस करने के काबिल होता है। अगर शुरुआत से ही बच्चे को इस चीज में ढाला जाए तो आप देखेंगे कि आगे चलकर उसके लिए मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट नहीं रहेगा, उसके लिए एक खेल बन जाएगा,
2: जो खेल खेल में वो खेल अच्छे से कर पाएंगे,
3: अच्छे से कर भी पाएंगे और उनका जो इंटरेस्ट है सब्जेक्ट के अंदर वो और बढ़ेगा। शुरुआती दौर में मुझे बड़ी मुश्किल आती थी मैथ्स के अंदर, तो लेकिन जब मैंने वैदिक मैथमेटिक्स सीखना स्टार्ट किया तो मुझे बहुत ही इंटरेस्ट लगा इसके अंदर और मैंने पाया कि ये इतना आसान सब्जेक्ट था जिसे हम स्कूलों के अंदर बहुत ही अनफॉर्चुनेटली मुश्किल एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट के तौर पर लेके चलते हैं।
2: ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि कुछ उदाहरण के तौर पर, जैसे इस समय हम रेडियो प्रोग्राम में है, हमारे पास ब्लैक बोर्ड नहीं है या हमारे पास ऑनलाइन बोर्ड नहीं है, तो कुछ उदाहरण आप बताइए कि जिस तरीके से हम समझ सकते हैं कि ये वैदिक मैथमेटिक्स या वैदिक गणित जो है ये परंपरागत गणित के साथ कैसे जुड़ा है।
3: जी, इसमें मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, जैसे कि अगर कोई आप संख्या लें जिसका एंडिंग में 5 आता हो, 5 आता हो,
2: से हम 15 लेते हैं,
3: हाँ 15 से थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते
2: हैं, 85
3: लेते हैं
2: जी।
3: अगर सपोज मुझे इसका स्क्वायर करना है, 85 का स्क्वायर करना है, तो अगर मैं परंपरागत मैथ्स का इस्तेमाल करूंगा तो मुझे पेन पेपर की जरूरत पड़ेगी,
2: ठीक है,
3: लेकिन अगर मैं वैदिक मैथ्स का इस्तेमाल करूं तो इसके लिए करना बहुत आसान हो जाएगा। अब इसमें करना क्या, आपने जो 8 की संख्या है 85 में उसको आप 9 से गुणा कर दीजिए, कितना आया 72 और जो पीछे 5 था उसको बस आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से ही, तो आया 25। अगर आप इसको चेक करेंगे कैलकुलेटर पे तो आपका आंसर बनता है 7225।
2: ओके, तो ये एक तरीके से हम ये मान के चले कि ये एक तरीके से मैथमेटिक्स का, एक गणित का शॉर्टकट है, अगर हम अपने मस्तिष्क को इस्तेमाल करें और यूज करें।
3: जी जी,
2: कहीं ऐसा तो नहीं है हम कहते हैं कि जब हमें जिंदगी में तरक्की करनी है तो उसमें कोई शॉर्टकट नहीं होता, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये शॉर्टकट आने वाले दिनों में उस बच्चे को कुछ नुकसान कराए,
3: जी नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जो चीज हमारे वेदास में हमारे पूर्वजों ने हमें एक तोहफे के तौर पर दी है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि पिछले 7 साल से मैं वैदिक मैथ्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ, बच्चों को पढ़ा भी रहा हूँ, मुझे तो आज तक इसके फायदे ही हुए हैं, नुकसान आज तक कोई नहीं हुआ है।
2: नहीं, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मैंने भी बीएससी की है और मैथमेटिक्स है, और मैं भी मैथ में अच्छा नहीं रहा हूँ। जैसे आपने बोला कि 85 का जैसे हमें स्क्वायर निकालना है, हम 8 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे,
3: 8 को उसकी अगली संख्या जो 9 आती
2: है। अच्छा अच्छा,
3: कोई भी
2: 8 की जो अगली संख्या है 9, उससे हम गुना करेंगे तो वो 72 आया, यानी 72 आया, और जो 5 था उसको हम उसी से गुना करेंगे, वो 25 आया, तो आपने उसका रिजल्ट निकाला
3: जी।
2: तो क्या यही प्रोसेस है गणित का, जो वैदिक गणित का, कि हमें कोई भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी तो हम कुछ ही क्षणों में उसका आंसर निकाल सकते हैं?
3: जी बिल्कुल, ऐसी बहुत सारे टेक्निक्स हैं, या कह लीजिए इसमें जैसे सूत्रास दिए गए हैं, तो उन सूत्रास का अलग अलग एप्लीकेशन है, जिससे हम बहुत सारी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को आसान कर सकते हैं।
2: बहुत ही जिज्ञासा वाला सब्जेक्ट है, और मेरे लिए भी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे भी वैदिक गणित जो है वो सीखना चाहिए, और आने वाले दिनों में हम कोशिश करेंगे, हम आपके क्लासेस भी जरूर ले लेंगे
3: जी।
2: अगला प्रश्न सर आपसे करता हूँ, वैदिक गणित को तेज और प्रभावी होने के लिए जाना जाता है, क्या कुछ उदाहरण आप दे सकते हैं? जैसे आपने अभी दिया, मैं चाहूंगा कि एक और कोई उदाहरण हो जो ये भी साबित कर दे कि जो हम इसकी गणना करते हैं वो कम से कम समय में कर सके।
3: जी, दोबारा से मैं एक उदाहरण स्क्वायर्स का ही ले लेता हूँ, क्योंकि वो जल्दी समझ में भी आ जाएगा श्रोताओं को
2: जी।
3: जैसे अगर हम मुझे कोई ऐसा नंबर, कोई ऐसी संख्या लें जो 100 के नजदीक है, और मुझे उसका स्क्वायर करना है
2: जी।
3: तो वही वापस से अगर मान लीजिए मुझे 105 का स्क्वायर करना है
2: जी।
3: तो मैं क्या करूंगा, 10 को
2: 11
3: से गुणा कर दूंगा, और 5 का दोबारा से 5 से गुणा कर देंगे, तो इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी 11025। और अगर 100 से नीचे की कोई संख्या है, मान लीजिए 97 है, 97 का मुझे स्क्वायर करना है, तो मैं क्या करूंगा, 97 में से जितना वो 100 से दूर है
2: जी,
3: उतना और माइनस कर दूंगा। जैसे 97 100 से 3 दूर है,
2: दूर है, ठीक है,
3: तो 3 उसमें से माइनस कर दीजिए,
2: वो हो गए 94 हो गए।
3: और 94 के पीछे मेरे पास 2 डिजिट्स का स्पेस बचा है, तो उसके अंदर मैं 3 का ही स्क्वायर करके लिख दूंगा।
2: ओके,
3: तो 3 का स्क्वायर होता है 9, लेकिन क्योंकि मेरे पास 2 डिजिट्स का स्पेस था तो मैं लिखूंगा 09, तो इसका जो पूरा आंसर बनेगा वो बनेगा 9409।
2: बहुत खूब, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है ये सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें ना तो पेन की जरूरत है और ना घर वालों की डांट जरूरत है, हमें सिर्फ अपने ब्रेन को यूज करना है, अपने दिमाग को यूज करना है, और हम अपनी समस्याओं का समाधान गणित के हिसाब से कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इन रिप्लाईज के लिए। आपसे जानना चाहेंगे कि वैदिक गणित का क्या योगदान है, और आजकल के कॉम्पिटिटिव दौर में ये बच्चों के एग्जाम में कितना लाभदायक है?
3: जी, वैदिक मैथ्स का अगर आप देखेंगे, पहले तो नहीं, लेकिन अब स्कूल्स ने भी इसको पहचानना शुरू किया है। मैं अगर अपने खुद के एक्सपीरियंस के बारे में बात करूं, मैं अंबाला के अंदर लगभग 20 से ज्यादा स्कूल्स के अंदर वैदिक मैथ्स और ब्रेन जिम की वर्कशॉप्स लगा चुका हूं, तो जहां से बहुत ही खूबसूरत रिस्पॉन्स हमें मिला और बच्चों ने इसको बहुत अप्रिशिएट किया। और जहां तक बच्चों के एजुकेशन का सवाल है कि कैसे इसमें इस्तेमाल होगा, बेसिकली आपको जैसे अब 5th onwards, अगर आप देखें, बच्चे को बेसिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आ जाती है
2: जी।
3: तो वहां से बच्चा इसको सीखना स्टार्ट कर सकता है,
2: ठीक है।
3: और आगे चल के उसको, क्योंकि कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड है, प्लस 2 के बाद वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आएगा, तो वहां पर तो इसका बहुत वास्ट स्केल पे यूज होता है। आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम उठा के देख लीजिए, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो कोई एंट्रेंस एग्जाम,
2: ऑप्शनल आंसर्स होते हैं उसमें,
3: हाँ जी, ऑप्शनल होते हैं, और साथ में वैदिक मैथ्स का बहुत वास्ट यूज वहां पर होता है जी।
2: जी
3: जी, तो वहां पर हम इसको बहुत प्रेफर करते हैं कि आप वैदिक मैथ्स अगर इनिशियल स्टेजेस में सीखते हैं तो वो आगे चलकर आपको बहुत फायदा करेगा।
2: आपके अनुभव से जिन बच्चों को आपने आज तक पढ़ाया है, क्या एक साधारण बच्चा, जिसको हम ये कहेंगे कि जो पढ़ाई में साधारण है और एक उच्च स्तर पर है, क्या हर लेवल के बच्चे वैदिक गणित को अच्छे से समझ पाते हैं और उसका यूज कर पाते हैं?
3: इसमें मैं थोड़ा सा अपना भी बताना चाहूंगा कि शुरुआत में मैं मैथ्स में बहुत अच्छा नहीं था
2: जी,
3: जैसे कि आपने अपना उदाहरण दिया जी। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ज्यादातर बच्चे क्लास के अंदर मैथ्स और साइंस ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें थोड़ा सा उनको मुश्किल आती है क्योंकि तो जब मैं वैदिक मैथ्स में आया तो मुझे एहसास हुआ कि पहले मेरे पास ये चीज क्यों नहीं आई, पहले मुझे सीखने का मौका क्यों नहीं मिला। तो एक थोड़ा सा गिल्ट और रिग्रेट भी मेरे मन में था, बट कहते हैं ना जो किस्मत में लिखा होता है, जो परमात्मा ने आपसे करवाना होता है
2: वही मिलना है हमें।
3: तो बस ये कह लीजिए एक डेस्टिनी का खेल था।
2: पर मुझे एक चीज की खुशी है कि जो कमी आपने महसूस किया, पर आपने उस कमी को अब और बच्चों के लिए दूर करने की एक कोशिश आप कर रहे हैं और आपने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है। जो कमी हमारी रही तो हम हमेशा कोशिश करेंगे कि जो आने वाली पीढ़ी है, जो आज के युवा है, उनको वो कमी ना रहे। तो इसके लिए ऐसे ही आपको जो बच्चे हैं वैदिक सर नहीं बुलाते हैं तो वैदिक सर हम आपसे एक अलग सा एक प्रश्न करना चाहेंगे। गणित तो हर जगह इस्तेमाल होता है, क्या संगीत में भी गणित का प्रयोग होता है? अगर होता है तो कौन सा ऐसा गणित या कौन सा ऐसा गीत आपके चॉइस का है जो हम आपको और श्रोताओं को सुनाना चाहेंगे?
3: देखिए गणित का विषय तो दिमाग से चलता है और जो संगीत का विषय आपने बताया है वो दिल से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है
2: जी।
3: तो ऐसे ही एक पुराने गाने हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, जिनमें से एक गाना है लिखे जो खत तुझे, तो ये बहुत ही पुराना
2: वो तेरी याद में
3: वो तेरी याद
2: जी जी, बहुत खूब बहुत खूब बहुत अच्छा गाना है ये। श्रोताओं आइए हम आपको सुनाते हैं वैदिक सर यानी आशीष गुप्ता जी का एक मनपसंद गीत जो है लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में। मैं आप सभी श्रोताओं को ये भी कहना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम के लिए अगर आपका कोई प्रश्न है आप हमें व्हाट्सएप वॉइस मैसेज के माध्यम से हमें भेजिए और हम कोशिश करेंगे वैदिक सर से आपके सवाल का जवाब भी लेंगे। आइए सुनते हैं ये गीत।

0: आप हमारे साथ हैं FM 90.0 MHz पर और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम इनसे मिलिए। और हमारे साथ है आशीष गुप्ता जी, जिनको वैदिक सर के नाम से जाना जाता है। वैदिक सर, आपसे एक और प्रश्न मैं करना चाहूंगा। भारत के बाहर वैदिक गणित का प्रयोग अधिक लोग नहीं जानते हैं, आप इसको वैश्विक रूप से कैसे प्रस्तुत और कैसे इसको बढ़ावा दे सकते हैं, खासकर शिक्षा प्रणाली में?
1: जी, भारत के बाहर की जहां तक बात है तो ऐसा कहना गलत हुआ कि बाहर भारत के बाहर लोग इसको नहीं जानते हैं। जहां तक मैंने देखा है कि भारत के बाहर जो इंडियंस गए हुए हैं, भारतीय लोग हैं
0: जी,
1: वो बहुत ही ज्यादा अवेयर हैं अपने बच्चों को लेकर। और मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज ऐसी आती हैं, जैसे कि US है, कनाडा है, ऐसे देशों से ऑनलाइन क्लासेस के लिए वैदिक मैथ्स की
0: जी।
1: तो बाहर के भी लोग जो है इसको अप्रिशिएट करते हैं और सीखने में उनकी रुचि रहती है जी, क्योंकि बाहर के लोग जो है साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले रहते हैं और उनका बहुत रुचि है हमारे कल्चर को जानने में
0: जी।
1: सिर्फ वैदिक मैथमेटिक्स की ही बात ना करें, और भी चीजें जो हमारे कल्चर से जुड़ी हुई हैं वो उसमें बहुत रुचि लेते हैं। वैदिक मैथमेटिक्स भी उसमें से एक है। इसके अलावा हम लोग जो क्या काम करते हैं वैदिक मैथमेटिक्स को विश्व पटल पर लाने के लिए, हम लोग अपनी ऑनलाइन वर्कशॉप्स करते हैं
0: जी।
1: हम लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल्स बनाए हुए हैं जहां से हम इसको प्रमोट करते हैं विश्व भर के अंदर, और रिस्पॉन्स भी काफी अच्छा आता है इसको लेकर।
0: वैदिक सर, आपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात
1: जी,
0: तो जो आप शिक्षा बच्चों को देते हैं
1: जी,
0: तो कौन से प्लेटफॉर्म से आप देते हैं?
1: जी, हम लोग जूम या गूगल मीट प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए
0: जी।
1: और यहाँ पर ऑनलाइन माध्यम से हमारे लिए एक फायदा ये रहता है कि बच्चा किसी भी कोने में हो दुनिया के, वहां बैठकर अपने घर पर बैठकर इस विद्या को सीख सकता है, इस गणित को सीख
0: तो
1: सकता
0: आपके
1: है।
0: साथ जितने भी बच्चे आज तक जुड़े हैं
1: जी,
0: तो उनमें से आप बता सकते हैं कि कहां कहां से आपके साथ जो स्टूडेंट्स है वो कहां कहां से आपके साथ जुड़े हैं?
1: अगर मैं भारत की बात करूं तो मेरे पास तमिलनाडु और गुजरात, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, पंचकुला और इवन जम्मू से, तो इस तरह से बहुत से अलग अलग स्टेट से हमारे साथ बच्चे ऑनलाइन माध्यम से कनेक्ट हो जाते हैं। अगर मैं भारत के बाहर की बात करूं तो USA है, कनाडा है, हालांकि वहां टाइम जोन का थोड़ा फर्क रहता है। जैसे अगर सुबह के 7:30 बजे भारत में होंगे तो वो रात के 8:30 बजे US में होते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग मैनेज करते हैं टाइम जोन के अंदर भी और ऑनलाइन क्लासेस हम लोग प्रोवाइड करते हैं।
0: इसका मतलब हम ये मान के चलें कि जो वैदिक गणित है
1: जी,
0: वो केवल भारत में ही नहीं पढ़ा जाता है बल्कि ये वैश्विक रूप से
1: जी,
0: पढ़ा भी जाता है और लोग इसके बारे में जानते भी
1: जानते।
0: कुछ रिसर्च में वैदिक मैथ्स की भ्रांतियों के बारे में कहा गया है, आप इसको कैसे स्पष्ट करना चाहेंगे?
1: देखिए, भ्रांतियां क्या है, जैसे अगर किसी आम इंसान को आप वैदिक मैथ्स के बारे में बताएंगे कि जैसे ही मैथ या गणित शब्द आता है तो दिमाग में आता है संख्या, कि कहीं ना कहीं इससे हमारा शायद कैलकुलेशन और नंबर्स को सॉल्व करने की जो काबिलियत है वो बेहतर होगी। लेकिन इसके साथ वैदिक मैथ्स के और भी फायदे हैं। जैसे अगर आप वैदिक मैथ्स सीखते हैं कोई भी बच्चा, तो उसमें क्या होता है, उनकी जो एकाग्रता शक्ति है, कॉन्सेंट्रेशन पावर है, वो काफी बढ़ जाती है। दूसरा, वो जो मैथ्स को लेकर उनके मन में एक फोबिया है, डर है, वो कहीं ना कहीं डर दूर हो जाता है। और अगर आपने बच्चे के मन से वो डर निकाल दिया तो फिर आपको उसको सिखाना नहीं पड़ेगा,
0: वो खुद ही सीखेंगे,
1: खुद ही सीखना शुरू कर देंगे।
0: मतलब उनकी दिलचस्पी उसमें उतनी बढ़ेगी कि वो उसमें और रिसर्च करना चाहेंगे और करेंगे
1: जी,
0: और फिर आगे अपने आप को काबिल उसके
1: काबिल बना।
0: मुझे आप ये बताइए कि हमने कई बार टेलीविजन में देखा कुछ ऐसे बच्चे सामने आते हैं जो उंगलियों पर इतने बड़े बड़े मैथमेटिकल क्वेश्चंस के आंसर देते हैं, क्या उसका बेस वैदिक गणित ही है या कुछ और है?
1: जी, वो जो आपने देखा होगा बच्चे जो फिंगर्स के थ्रू काउंटिंग करते हैं
0: जी,
1: और मेंटली काउंट कर लेते हैं बड़ी संख्याओं को, उसमें वैदिक मैथ्स के अलावा अबैकस का एक बहुत बड़ा रोल है। लेकिन अबैकस जो है हमारा वो 1ली से 5वीं कक्षा तक सीमित है
0: जी,
1: और जो वैदिक मैथमेटिक्स है वो शुरुआत ही उसकी 5वीं कक्षा के बाद होती है।
0: और ये कहाँ किस कक्षा तक होती है?
1: ये इसका अपर एज लिमिट कोई नहीं है। तो अगर आप बड़े भी हैं उम्र में, अगर आपकी पढ़ाई पूरी भी हो चुकी है और आप शौकिया तौर पर वैदिक मैथ सीखना चाहें तो भी आपका स्वागत है, आप शौकिया तौर पर भी वैदिक मैथ सीख सकते हैं।
0: तो चलिए, मैं तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से ये कहूंगा कि आपका अगला स्टूडेंट मैं हूँ। मुझे बड़ी जिज्ञासा हो रही है वैदिक मैथ सीखने के लिए, वैदिक गणित के बारे में जानने के लिए, क्योंकि हो सकता है कि जहां जहां हम रेडियो के माध्यम से जाते हैं तो मैं इस बात का भी प्रचार करूंगा कि हमें जो हमारे वेदों ने दिया है तो हम उसको अगर अपनाएं तो हम अपनी जिंदगी को और बेहतर बना सकते हैं। जैसे मैंने अभी श्रोताओं को कहा था कि अगर आपका कोई प्रश्न है, हमारे पास व्हाट्सएप पे एक प्रश्न आया है और ये प्रश्न आया है अम्बाला सिटी से और ये है सिया शर्मा। तो आइए सुनते हैं इनका प्रश्न क्या है।
2: My name is Siya Sharma from PKR Jain Vatika. I just wanted to know that is Vedic maths efficient for higher classes also?
0: जी, ये प्रश्न आया है अम्बाला सिटी से और आपने प्रश्न सुना, कृपया इसका उत्तर दें।
1: तो सिया, पहले तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि वैदिक मैथ्स की जो शुरुआत होती है वो पांचवी कक्षा से लेकर ही होती है और इसका कोई अपर एज लिमिट नहीं है। आप अगर सीनियर क्लासेस में भी हैं, दसवीं में, बारहवीं में, और अगर आप कॉलेज में भी हैं या आप कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी कर चुके हैं उसके बाद भी कभी भी आप वैदिक मैथ्स सीख सकते हैं। हालांकि अगर आप जितना जल्दी हो सके इसको सीखना शुरू करेंगे तो आगे आने वाली पढ़ाई में आपको ये उतना ही फायदा करेगा और समय के साथ साथ आपकी ये कला निखरती जाती है। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं पिछले 7 साल से वैदिक मैथ सीख रहा हूं, तो इसमें जितना जल्दी आप शुरुआत करेंगे उतना आप इसमें प्रवीण होते चले जाएंगे।
0: बहुत बहुत शुक्रिया सिया, आप रेडियो वितस्ता के कार्यक्रमों के साथ पहले भी जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये प्रश्न हमें भेजा और हमने कोशिश की इस प्रश्न का जवाब देने के लिए। वैदिक सर, अब हमारे पास एक और गुंजाइश है यहाँ पर श्रोताओं को आपके एक मनपसंद और गीत को सुनाने के लिए, और हम चाहेंगे कि कौन सा ऐसा गीत है जो आप सुनना पसंद करेंगे और श्रोताओं तक पहुंचाना चाहेंगे।
1: जी, एक बहुत ही पुराना गाना है जिसमें है आने वाला कल जाने वाला है, तो ये एक मैसेज भी हमें देता है, तो ये काफी खूबसूरत संगीत है।
0: आइए श्रोताओं सुनते हैं ये गीत, आपके पास अभी कुछ क्षणों के बाद आएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम इनसे मिलिए एपिसोड 10। आज के आमंत्रित मेहमान थे वैदिक मैथमेटिक्स एक्सपर्ट आशीष गुप्ता, जिनको वैदिक सर से भी जाना जाता है। रिकॉर्ड किया राहुल अल्यान ने, एडिट निर्देशन और प्रस्तुतकर्ता भारत सोपोरी। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

0: সেই তালাজমহল, এক হে লতা মঙ্গেশকর, এক হে রেডিও বিতস্তা, হম সফর জিন্দগি কা।
1: ও টাই দিন না জওয়ানি নাল চল দি
0: 90.0 মেগাহার্টজ পর। अब बालकेंट से हमारी ये प्रसारण सुनते रहिए दिल से।
2: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आपदा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।
3: तुशु बोजान FM 90.0 रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी हुन। बोजान रोजू पनीन पसंदीद बर्थ।

0: अच्छे हम अकेले
1: जालिम साथ ले ले।
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल सकोगे समझे।
0: हाँ समझे।

0: हो रहना किसी के,
1: क्या करना है देखे?
0: अरे हो रहना किसी के,
1: हम रहे तो

0: कुमार, अरे तुम बस गाड़ी को भी यहीं पंक्चर होना था। हम पहुँचे तो सारी आफत चल गई बाबा, इन हाथों से सबकी गाड़ी चल रही है बाबा।
1: वाह, अरे वाह, अरे

0: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।
1: ये रातें, ये मौसम।

0: सुनते रहो अपने पसंदीदा गीत।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
2: You are listening FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का। अंबाला कैंट्स फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो, लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

सुनिए और सुनाइए रेडियो विविधता, सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

आइए कुछ अच्छा सुनते हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता पर। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

यू आर एंजॉयिंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का एक कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: की दालच में एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी ये प्रसारण सुनते रहिए

0: अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: नब्बे आशारिया सिफर FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

फिल्मी गीतों का ये सफर आप तय करेंगे अपने रेडियो दोस्त रमेश मराठा के साथ। आदाब।

तुझसे लफ्जों का नहीं रूह का रिश्ता है मेरा। तू मेरी सांसों में बसी है खुशबू की तरह।

ये दिल लगी कहीं छूट न जाए पीछे, क्योंकि अपनी दुआओं में मैं रब से सिर्फ तुम्हें मांगता हूं। हर पल चुरा लेता हूं तुम्हें तुम्हें से। इन शामों में यहीं पे आकर तुम्हें ढूंढता हूं, तुम्हारा इंतजार करता हूं बर्फ पिघलने तक। इन मौसमों के गुम हो जाने तक कहीं ये दिल लगे ना छूट जाए। चश्मे पुर आपको समंदर लिखूं या न लिखूं, तुमसे नजरें मिला के बार बार ये ख्याल आया।

बस जिंदगी यूं ही गुजर गई बिना बात कहे, इस अंजमन में बातें हुई पर वो बात रह गई जो सीने में

काश कोई सुनने के लिए फिर से मुझे आवाज देता, मुझे पुकारता, मुड़ के देखता, ठहरता चंद पलों के लिए। शायद शायद मैं अपनी बात कह पाता।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: ने और रिकॉर्ड एडिट व निर्देशित किया भारत सोपोरी ने।
1: जीने की ख्वाहिश को ये झूला।
0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। ये कार्यक्रम उन अनमोल व्यक्तित्वों को समर्पित है जिनके अनुभव और ज्ञान हमारी समाज की नींव है। हमारे बुजुर्ग, उनकी आंखों में जीवन के हजारों रंग बसे होते हैं, उनकी झुर्रियों में कहानियां छिपी होती है और उनके शब्दों में सच्चाई का सार होता है। आज का ये शो उन सभी को समर्पित है जिन्होंने हमें बढ़ते हुए देखा है, संवरते हुए देखा और निस्वार्थ प्रेम दिया है।
2: बिल्कुल सही कहा ददू। हमारे बुजुर्ग वो पेड़ है जिनकी छाया में हम सुकून पाते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बदल रहा है उनकी जरूरतें भी बदल रही हैं। आज हम एक बार फिर डोरते हैं कि सरकार और समाज उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं। सरकार ने हमारे बुजुर्गों के लिए कई योजनाएं शुरू की है जो उनकी जिंदगी को आसान बना रही है।
0: हाँ लक्ष्मी, और इन योजनाओं का उद्देश्य केवल उनकी समस्याओं का समाधान करना ही नहीं बल्कि उनके जीवन को सम्मानजनक और खुशहाल बनाना भी है। बुजुर्गों को सिर्फ देखभाल की जरूरत नहीं होती बल्कि अपनापन, सम्मान और आत्मनिर्भरता की भी जरूरत होती है। चलिए एक एक करके इन योजनाओं पर बात करते हैं ताकि हम अपने श्रोताओं को बता सकें कि वो इनका लाभ कैसे उठा सकते हैं।
2: सबसे पहले बात करते हैं वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम IPSRC। ये योजना उन बुजुर्गों के लिए बेहद उपयोगी है जो देखभाल के अभाव में अकेलेपन और उपेक्षा का सामना कर रहे हैं। इसके तहत वृद्ध आश्रमों, सतत देखभाल गृहों और अन्य सुविधाओं के लिए गैर सरकारी संगठनों को सहायता दी जाती है। सोचिए कितने बुजुर्गों को इससे आराम और सुरक्षा मिल रही होगी।
0: सही कहा लक्ष्मी, और जो बुजुर्ग किसी मुश्किल में फंस जाए उनके लिए सरकार ने एल्डर लाइन 14567 हेल्पलाइन शुरू की है। ये हेल्पलाइन पेंशन, कानूनी समस्याओं, राशन कार्ड, आवास योजनाओं और आयुष्मान कार्ड जैसी सेवाओं की जानकारी मुफ्त में प्रदान करती है। यानी अगर किसी बुजुर्ग को कोई सरकारी सेवा प्राप्त करने में कठिनाई हो रही हो तो बस एक कॉल से उन्हें सही मार्गदर्शन मिल सकता है।
2: और हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बुजुर्गों की सही देखभाल के लिए प्रशिक्षित लोगों की आवश्यकता होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जेरियाट्रिक केयरगिवर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है। इसके तहत पेशेवर देखभालकर्ता तैयार किए जाते हैं जो बुजुर्गों की जरूरतों को समझते हैं और उनकी देखभाल में सहायता प्रदान करते हैं।
0: बहुत बढ़िया, और अब बात करते हैं सेज पोर्टल की, यानी सीनियर एजिंग ग्रोथ इंजन। यह एक बेहतरीन पहल है जिससे बुजुर्गों की देखभाल से जुड़ी सेवाओं और उत्पाद एक ही जगह पर उपलब्ध कराए जाते हैं। इससे न केवल उनकी जरूरत पूरी होती है बल्कि उनके जीवन को अधिक सुविधाजनक भी बनाया जाता है।
2: बिल्कुल, और जिन बुजुर्गों के पास आर्थिक संसाधन सीमित है उनके लिए राष्ट्रीय वयोश्री योजना एक वरदान है। इसके तहत BPL श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरण जैसे वॉकर, व्हीलचेयर, सुनने की मशीनें आदि मुफ्त में दिए जाते हैं।
0: और स्वास्थ्य की बात करें तो आयुष्मान भारत योजना बुजुर्गों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। इसके तहत उन्हें मुफ्त में आँखों के ऑपरेशन और अन्य आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाती है।
2: और एक बेहद महत्वपूर्ण पहल है भरण पोषण का अधिकार अधिनियम। ये उन माता पिता या वरिष्ठ नागरिकों के लिए है जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। वे कानूनी रूप से सहायता का दावा कर सकते हैं जिससे उन्हें सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार मिलता है।
0: इन योजनाओं का मकसद केवल समस्याओं का समाधान करना नहीं है बल्कि बुजुर्गों के जीवन को और बेहतर बनाना भी है। लक्ष्मी, जब हम बुजुर्गों की देखभाल की बात करते हैं

0: तो ये केवल उनके स्वास्थ्य सुविधाओं तक सीमित नहीं होना चाहिए, हमें उनके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा।
1: बिल्कुल, इसलिए ये जरूरी है कि हम अंतर पीढ़ीगत बंधन को मजबूत करें। जब युवा और बुजुर्ग एक साथ समय बिताते हैं तो न केवल बुजुर्गों को खुशी मिलती है बल्कि युवाओं को भी उनके अनुभवों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
0: और जिंदगी में सीखने की कोई उम्र नहीं होती, जीवन भर सीखने और कौशल विकास को बढ़ावा देने से बुजुर्ग आत्मनिर्भर बन सकते हैं। नए कौशल सीखना, किताब पढ़ना, ऑनलाइन कोर्स करना, ये सब उनके मानसिक स्वास्थ्य को भी मजबूत करता है।
1: और हमें आयु अनुकूल वातावरण बनाने पर भी ध्यान देना होगा। बुजुर्गों के लिए सुविधाजनक और सुरक्षित माहौल बनाना बहुत जरूरी है ताकि वे बिना किसी परेशानी के स्वतंत्र जीवन जी सके।
0: और क्या तुमने रजत अर्थव्यवस्था के बारे में सुना है? इसका मतलब है कि बुजुर्गों के लिए नए उद्योग और सेवाओं का निर्माण किया जाए। कई वरिष्ठ नागरिकों में अब भी काम करने की इच्छा होती है और ये पहल उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर देती है।
1: बहुत बढ़िया। इसके अलावा वित्तीय साक्षरता भी महत्वपूर्ण है। बुजुर्गों को पेंशन और बचत योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाया जा सकता है जिससे वे अपने खर्चों का प्रबंधन बेहतर ढंग से कर सके।
0: मानसिक स्वास्थ्य भी एक अहम मुद्दा है। बुजुर्गों को अकेलापन और तनाव से बचाने के लिए हमें उनके साथ समय बिताना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए और उनकी भावनाओं को समझना चाहिए।
1: और सिर्फ मानसिक ही नहीं बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमें उन्हें नियमित व्यायाम करने, टहलने और स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए।
0: तो दोस्तों, हमारा फर्ज है कि हम इन योजनाओं और विचारों का लाभ अपने परिवार और समाज के बुजुर्गों तक पहुंचाएं
1: और उनके अनुभवों और आशीर्वाद को संजोए, क्योंकि यही हमारी सच्ची धरोहर है।
0: आइए मिलकर कहें, हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान।
2: बुढ़ापा अभिशाप नहीं, बुढ़ापा बनेगा उत्सव जिंदगी का। अटल वयो अभ्युदय योजना बनाए बुजुर्गों की जिंदगी को आसान, लौटाए उनका खोया हुआ स्वाभिमान। कहा जाता है बुढ़ापा अपने आप में एक रोग है। उम्र बढ़ने के साथ हमारे बुजुर्गों को होती है कई तरह की शारीरिक समस्याएं। ऐसे में गरीब असहाय वरिष्ठ नागरिकों के पोषण के लिए सरकार ने उठाए हैं कदम। अटल वयो अभ्युदय योजना दिलाती है बुजुर्गों को सही पोषक भोजन। लगभग 50,000 बुजुर्गों को लाभ देने के लिए 39.6 करोड़ बजट में आवंटित किए गए हैं, जिससे होगा हमारे वरिष्ठ जनों का अभ्युदय। साथ ही सहारा बनी वरिष्ठ जनों का राष्ट्रीय वयोश्री योजना, जिसमें गरीबी रेखा के नीचे के हमारे सम्माननीय वरिष्ठों को मिलेंगे सहायक उपकरण और जीवन सहायक यंत्र जैसे व्हीलचेयर, हियरिंग हेड, वॉकर, जिससे खिल उठी हमारे बड़ों की खोई मुस्कान, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। CRA द्वारा निर्मित, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। यह कार्यक्रम उन अनमोल व्यक्तित्वों को समर्पित है जिनके अनुभव और ज्ञान हमारी समाज की नींव है। हमारे बुजुर्ग, उनकी आंखों में जीवन के हजारों रंग बसे होते हैं, उनकी झुर्रियों में कहानियां छिपी होती हैं और उनके शब्दों में सच्चाई का सार होता है। आज का ये शो उन सभी को समर्पित है जिन्होंने हमें बढ़ते हुए देखा, संवरते हुए देखा और निस्वार्थ प्रेम दिया। आज हम न केवल उनकी जिंदगी के बारे में बात करेंगे बल्कि ये भी जानेंगे कि कैसे हम उनके जीवन को और बेहतर बना सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा दादू, हमारे बुजुर्ग वो पेड़ हैं जिनकी छाया में हम सुकून पाते हैं। वे हमें जड़ों से जोड़ते हैं, हमें जिंदगी के अनमोल सबक सिखाते हैं और हमारी राहों को अपने अनुभवों से रोशन करते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बदल रहा है, उनकी जरूरतें भी बदल रही हैं। उनका सम्मान केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि हमारे कार्यों में भी झलकना चाहिए।
0: हाँ लक्ष्मी, ये सच है कि बदलते समय के साथ हमें भी उनके प्रति अपनी जिम्मेदारियों को और गंभीरता से लेना होगा। आज हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि सरकार और समाज बुजुर्गों के लिए क्या कर रहे हैं, बल्कि ये भी चर्चा करेंगे कि एक समाज के रूप में हम अपनी जिम्मेदारियों को किस तरह से निभा सकते हैं।
1: और हम सिर्फ योजनाओं की बात नहीं करेंगे, बल्कि कुछ भावनात्मक कहानियाँ भी साझा करेंगे, कुछ प्रेरणादायक अनुभव सुनेंगे और अपने श्रोताओं से भी जानना चाहेंगे कि वे अपने घर के बुजुर्गों के लिए क्या कर रहे हैं।
0: सही कहा लक्ष्मी, पर इससे पहले एक सवाल, क्या हम अपने बुजुर्गों के साथ उतना वक्त बिताते हैं जितना उनका हक है? क्या हम उनके साथ बैठकर उनकी कहानियां सुनते हैं, उनके अनुभवों से सीखते हैं और उन्हें ये एहसास कराते हैं कि वे हमारे लिए कितने अनमोल हैं? सोचिए और हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होइए।
1: और ये भी सोचिए कि हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। उन्होंने अपना सारा जीवन हमें संवारने, हमें सशक्त बनाने में बिता दिया। अब वक्त है हम उनकी जरूरतों को समझें, उनकी खुशियों का ख्याल रखें और ये सुनिश्चित करें कि वे अपने जीवन के इस पड़ाव में भी सम्मान और प्रेम के साथ जी सके।
0: बिल्कुल। तो दोस्तों, आज के इस खास एपिसोड में हम बुजुर्गों के जीवन को संवारने वाले कदमों पर बात करेंगे, कुछ प्रेरणादायक कहानियां सुनेंगे और आपके विचार भी जानेंगे।
1: तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बने रहिए हमारे साथ और आइए मिलकर अपने बुजुर्गों को वो सम्मान दे जिसके वे सच्चे हकदार हैं।
2: कितना अच्छा लगता है ना किसी की मदद करके। अगर मैं कहूँ कि आपकी मदद के इंतजार में कोई है जो आपकी राह देख रहा है, वो हैं हमारे वृद्धजन। दोस्तों, आज वृद्धजनों की जरूरतों और उनके मदद के लिए होती लोगों की कमी को देखते हुए हमारे भारत सरकार ने आप जैसे युवाओं को जेरियाट्रिक केयर गिवर्स बनने का मौका दिया है। वो युवा या युवतियां जिन्हें लोगों की मदद कर, स्पेशली बुजुर्गों की मदद कर दिल में होती है खुशी, तो आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं। ट्रेनिंग पाने के बाद आप बुजुर्गों की उचित देखभाल कर सकते हैं, उनकी डेली लाइफ और गैर डेली लाइफ पहलू के साथ साथ वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और उनकी संगति का भी ध्यान रख सकते हैं। अभी 3180 जेरियाट्रिक केयर गिवर्स को प्रशिक्षित किया जा चुका है। आप भी इसमें प्रशिक्षित हो सकते हैं और किसी के चेहरे की मुस्कान बन सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए scw.dosje.gov.in पर अभी विजिट करें। CRA द्वारा निर्मित और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: अब प्रस्तुत है एक नाटिका दादी का सपना। इसमें जो किरदार आप सुनेंगे उनमें रिया है जो कॉलेज छात्रा है, राजीव रिया के पिता, दादी बुजुर्ग महिला, राधा रिया की माँ और एक पड़ोसी। दृश्य एक, दादी का अकेलापन।
1: आज भी वो कहानी, रिया काले चली गई, राजीव ऑफिस और राधा अपनी सहेलियों के साथ व्यस्त। घर में सब है फिर भी मैं कितनी अकेली हूँ। शरीर का दर्द तो दवा से ठीक हो सकता है, पर इस दिल के दर्द का क्या? क्या मैं अब किसी के लिए भी जरूरत नहीं रही? क्या मेरा समय बस इस घर की चार दीवारी के अंदर ही गुजरने के लिए रह गया है?
0: नमस्ते दादी जी, कैसे हैं आप?
1: अरे बेटा नमस्ते। बस उम्र के साथ साथ शरीर में भी दर्द बढ़ता जा रहा है, कभी घुटनों का दर्द, कभी पीठ का और उससे भी बड़ा दर्द ये अकेलापन।
0: दादी जी, कभी कभी हम अपने अपनों के साथ होते हुए भी अकेलापन महसूस करते हैं। बच्चे तो अपनी जिंदगी की दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि उनका बचपन, उनकी यादें, उनके संस्कार सब आपके कारण ही तो है। आपका साथ ही तो उनकी असली प्रेरणा है।
1: बिल्कुल बेटा, जब बच्चे छोटे थे मैं उनके साथ हर समय रहती थी उनकी पसंद नापसंद उनकी हर छोटी बड़ी जरूरतों का ध्यान रखती थी। पर अब जैसे जैसे वे बड़े हुए उनकी जिंदगी में मेरी जगह छोटी होती जा रही।
0: दादी जी, शायद आपको उनसे खुलकर बात करनी चाहिए। कभी कभी लोग समझ नहीं पाते कि उनकी छोटी छोटी बातें भी आपके लिए कितनी मायने रखती हैं।
3: माँ, आपने गौर किया? दादी माँ हमेशा उदास सी रहती है। पहले वह कितनी बातूनी थी, हर चीज में दिलचस्पी लेती थी, अब बस चुप रहती है। क्या हम उन्हें समय नहीं दे पा रहे?
1: बेटा, कभी कभी हम अपनी ही जिंदगी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपनों के साथ का महत्व भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि सब ठीक है, लेकिन शायद दादी को हमारी जरूरत है।
3: पर माँ, हमने कभी उनसे सीधे पूछा कि उन्हें कैसा महसूस होता है?
1: नहीं बेटा, शायद यही गलती हो गई। हमें उनसे बात करनी चाहिए।
4: बिल्कुल सही कह रही हो बेटा। जब मैं छोटा था, दादी ने मेरे लिए ना जाने कितनी कहानियाँ सुनाई, हर रात मुझे लोरे गाकर सुलाया। आज जब उन्हें हमारी जरूरत है, तो क्या हम उनके साथ कुछ पल नहीं बिता सकते?
3: तो फिर इंतजार किस बात का? हमें आज से कुछ बदलना होगा। दादी, आज शाम आपकी पसंदीदा कहानी सुनाएंगी, ठीक वैसे ही जैसे आप बचपन में हमें सुनाया करती थी।
4: और सिर्फ कहानी नहीं, हम सब आपके साथ बैठेंगे, बातें करेंगे, आपके पुराने दिनों की यादें ताजा करेंगे।
1: और हाँ, हम रोज आपके साथ बैठकर कुछ वक्त बिताएंगे, चाहे जो भी हो। तुम सबने मेरे मन की बात सुन ली, यही तो मेरा सपना था। तुम सबके साथ समय बिताना, तुम सबकी बातें सुनना, तुम्हारे साथ हंसना, अब मुझे कोई दर्द महसूस नहीं होता।
2: सुनिए सुनिए सुनिए, आज हम जानेंगे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन IPSRC के बारे में। इस योजना के तहत सहायता कार्य करने के लिए एजेंसियां प्रदान की जाएंगी, जैसे राज्य, केंद्र शासित प्रदेश सरकारें, पंचायती राज संस्थान, स्थानीय निकाय और पात्र गैर सरकारी स्वैच्छिक संस्थान, जिससे हमारे बुजुर्गों के जीवन की गुणवत्ता में आएगा सुधार। इसके तहत वृद्ध जनों को आश्रय, भोजन, चिकित्सा देखभाल और एंटरटेनमेंट की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। साथ ही उन्हें सक्रिय और उत्पादक बुढ़ापे के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे उनका जीवन मूल्य और बढ़े। जी हाँ, वरिष्ठ नागरिकों के घरों, महिलाओं के लिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए घरों का रखरखाव, जिसमें सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत आने वाले घर भी शामिल हैं, जहाँ उन्हें निःशुल्क भोजन, आश्रय, देखभाल, मनोरंजन जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। तो अब वरिष्ठ नागरिकों को मिला उनका सम्मान, जीवन होगा उनका आसान। हमारे बुजुर्ग, हमारा स्वाभिमान। CRA द्वारा निर्मित, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जनहित में जारी।
0: दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे बुजुर्गों को खुश रखने के लिए महंगे तोहफे या बड़ी बड़ी सुविधाओं की जरूरत नहीं होती? उन्हें बस हमारे समय, स्नेह और सम्मान की दरकार होती है। एक कप चाय के साथ बैठकर उनकी बातें सुनना, उनके अनुभवों को समझना, बस इतना ही काफी है उनके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए।
1: बिल्कुल, और ये छोटी छोटी बातें जो हमें आम लगती है, उनके लिए अनमोल होती है। बुजुर्ग केवल हमारे पारिवारिक इतिहास या परंपराओं के संरक्षक भर नहीं है, बल्कि वह वो दर्पण है जिसमें हम अपने भविष्य की झलक देखते हैं। उनकी कहानियाँ, उनके अनुभव, उनकी सीख, ये सब वो खजाना है जिसे हम जितना समझेंगे उतना ही समृद्ध होते जाएंगे।
0: सच कह रही हो लक्ष्मी, लेकिन अफसोस की बात ये है कि हम अक्सर अपनी तेज रफ्तार जिंदगी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें ये एहसास ही नहीं होता कि उनके पास हमारे लिए ढेर सारी कहानियाँ, जीवन के सबक और कभी कभी बस हमारी हाँ में हाँ मिलाने की चाहत होती है।
1: और कितनी बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं, चलो बाद में बैठेंगे दादा दादी के पास, अभी तो बहुत काम है, और वो बाद में कभी आता ही नहीं। उनके पास जाने, उनके पास बैठने, उनकी कहानियाँ सुनने का समय अभी है, यही पल है।
0: बिल्कुल, मुझे याद है मेरी दादी को अपने बचपन के किस्से सुनाना बहुत पसंद था। वो जब भी पुरानी बातें याद करती, उनके आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती थी। लेकिन जब मैं छोटा था, मुझे लगता था कि ये बातें शायद इतनी खास नहीं है। अब जब मैं बड़ा हो गया हूँ, तो समझ आता है कि वो सिर्फ कहानियां ही नहीं थी, वो जीने की कला सिखाने वाले सबक थे।
1: हाँ, और यही एहसास हमें तब होता है जब हम थोड़ा ठहर कर उनकी बातों में गहराई से झांकने की कोशिश करते हैं। कई बार उनकी कहानियां हमें उन सवालों के जवाब दे देते हैं जिनके बारे में हम खुद उलझे होते हैं। वो हमारे जीवन के अनुभवों से परे अपनी जिंदगी की किताब के पन्नों से हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या सही है क्या नहीं।
0: तो दोस्तों, क्यों न हम भी अपने दादा दादी, नाना नानी और अपने आसपास के बुजुर्गों के साथ कुछ पल बिताएं, उनकी कहानियां सुनें, उनके साथ बैठें और उन्हें ये एहसास दिलाएं कि वो हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं।
1: हाँ, क्योंकि उनका साथ सिर्फ हमारी जिंदगी को बेहतर नहीं बनाता, बल्कि हमें ये सिखाता है कि प्यार और अपनापन किसी भी उम्र में सबसे कीमती चीज होती है।
0: तो चलिए, अब और देर नहीं करते, सुनते हैं हमारे श्रोताओं की कहानियाँ।
5: आज मैंने रेडियो विदस्ता 90.0 FM पर सुनकर पता चला कि सरकार द्वारा जितनी हमारी जानकारी में योजनाएं हैं वृद्धों के लिए, बुजुर्गों के लिए, उससे कहीं ज़्यादा योजनाएं चलाई जा रही हैं, और बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जिनका हमें पता ही नहीं था। इस तरह से जागरूक करते हुए हमें इन योजनाओं के बारे में इसमें बताया गया। और भी बहुत सारे कदम बुजुर्गों की भलाई के लिए उठाए जा सकते हैं, जैसे कि हम बैंक वगैरह में देखते हैं कि हमारे वृद्ध लोगों के लिए कोई स्पेशल काउंटर्स नहीं लगे हुए हैं, तो वो भी हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, या और भी इस तरह की जो फैसिलिटीज हैं हम उनको दे सकते हैं। बाकी इस प्रोग्राम के माध्यम से जो भी योजनाएं हमें पता चली और उनका लाभ कुछ लोग तो ले रहे हैं, और कुछ योजनाओं का लाभ इस प्रोग्राम के माध्यम से हमारी जानकारी बढ़ी, और हम उसको लोगों तक पहुंचाएंगे, बताएंगे, जिनको जरूरत है उनको भी बताएंगे कि आपको इस माध्यम से ये सेवाएं मिल सकती हैं। सरकार का ये एक बहुत अच्छा कदम है जो वृद्ध व्यक्तियों के लिए अब कोई सोचने जा रहा है। इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि भारत सरकार की ये एक बहुत बढ़िया प्रयास है कि लोकल समुदाय के अंदर जो हमारे रेडियो स्टेशंस हैं उनके द्वारा लोगों को बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज दी जा रही हैं, और इस तरह की योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है और जागरूक किया जा सके। आपका मेरे से इस बारे में जानकारी लेने के लिए धन्यवाद। और मेरा नाम परवीन पुंज है, मैं यहाँ पे बहुत सारे सामाजिक ग्रुपों से जुड़ा हुआ हूँ, जिसकी वजह से कुछ मैं ये जानकारी इस बारे में रखता था, और बाकी भी हम लोगों तक ये जानकारी पहुँचाएंगे।
0: तो दोस्तों, आपने सुना हमारी श्रोताओं के अनुभव। हर कॉल हमें यही सिखा रही थी कि हमारे बुजुर्गों के साथ बिताए गए पल कितने अनमोल होते हैं। आप भी सोचिए, आखिरी बार आपने अपने दादा दादी या नाना नानी के साथ खुलकर कब समय बिताया था?
1: अगर जवाब सोचने में देर लग रही है तो यही समय है उनके पास जाने का, उनसे बातें करने का।
0: दोस्तों, हमने अब तक बुजुर्गों के अनुभवों, उनकी सीख और उनसे जुड़े खूबसूरत लम्हों के बारे में सुना, लेकिन जिंदगी सिर्फ सुनहरी यादों से नहीं चलती। उम्र बढ़ने के साथ कई बदलाव आते हैं, शारीरिक भी और मानसिक भी, और कई बार हम इस बदलाव को समझ नहीं पाते।
1: बिल्कुल, हम अक्सर सोचते हैं कि बुजुर्गों को बस शारीरिक देखभाल की जरूरत होती है, उनकी दवाइयां, खान पान और आराम, लेकिन क्या हम कभी सोचते हैं कि उनकी मानसिक और भावनात्मक जरूरतें भी उतनी ही अहम है।
0: सही कहा लक्ष्मी। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हमारे घर के बुजुर्ग पहले जितना खुश नहीं रहते, कभी कभी वे चुप चुप से रहने लगते हैं, छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं या फिर खुद को बाकी परिवार से दूर कर लेते हैं। हम समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है।
1: हाँ, और अक्सर इसे बुढ़ापे की आदत मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये अकेलापन, चिंता और यहाँ तक कि डिप्रेशन का संकेत भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, बुजुर्ग खुद भी अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त नहीं कर पाते।
0: और यही कारण है कि हमें न सिर्फ उनके साथ समय बिताना चाहिए बल्कि उनकी भावनात्मक सेहत पर भी ध्यान देना चाहिए।
2: हमारे बुजुर्ग ना हो निराश, क्योंकि केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार ने मिलकर जगाई है उनके लिए नई आश। जी हाँ, राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर कई योजनाएं चला रही हैं, जिससे वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण को प्राथमिकता, उनके स्वास्थ्य सुरक्षा और सामाजिक समावेशन के लिए नीतियां और कार्यक्रम लागू किया जा रहा है। वृद्धाश्रम और अन्य कल्याणकारी सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। बुजुर्गों को वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है। उनकी गरिमा और आत्मनिर्भरता को बनाया जा रहा है और भी सुविधायुक्त। साथ ही राज्य कार्य योजना की मुख्य घटके हैं स्वास्थ्य सेवाएं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित की जा रही है और फ्री हेल्थ चेकअप और नियमित मेडिकल कैंप का आयोजन किया जा रहा है। बुजुर्गों के लिए गैर संचारी रोगों का उपचार आयुष्मान भारत के तहत 70 वर्ष से अधिक हर तरह के बुजुर्गों को मिल रहा है आयुष्मान कार्ड का लाभ। वित्तीय सहायता और पेंशन के लिए कमजोर आय वर्ग के बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है। आवास और आश्रय के लिए हर जिले में वृद्धाश्रम की स्थापना, बेघर बुजुर्गों को आश्रय प्रदान करने का कार्य किया जा रहा है। साथ ही भोजन और पोषण के लिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए सस्ते दरों पर पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराए जाने का कार्य भी किया जा रहा है। तो आप बुजुर्गों, बस आप हो जाइए तैयार, क्योंकि राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार कर रही है अपने बुजुर्गों का सत्कार। जी हाँ, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सौजन्य से CRA द्वारा निर्मित और प्रसारित।
0: दोस्तों, बुजुर्गों की देखभाल सिर्फ उनकी जरूरतें पूरी करने तक सीमित नहीं होनी चाहिए। हमें उनकी भावनाओं को भी समझना होगा, उनके अकेलेपन को दूर करना होगा और उन्हें ये एहसास दिलाना होगा कि वे परिवार के लिए अनमोल हैं। अब सवाल ये उठता है, हम अपने बुजुर्गों के लिए क्या कर सकते हैं?
1: और इसका जवाब बहुत ही सरल है, लेकिन इसके लिए हमें अपने व्यस्त जीवन से बस थोड़ा सा समय निकालना होगा। हमें ये याद रखना होगा कि हम जितना प्यार और सम्मान अपने बचपन में उनसे पाते थे, अब वही हमें उन्हें लौटाना है।
0: तो चलिए कुछ बेहद आसान लेकिन असरदार चीजें अपनाते हैं, जिससे हमारे घर के बुजुर्ग ज्यादा खुश और स्वस्थ महसूस कर सकें। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, उनके साथ समय बिताएं। दोस्तों, हम दिन भर कितनी चीजों में उलझे रहते हैं, काम, पढ़ाई, सोशल मीडिया, टीवी, लेकिन क्या हम दिन में 15 मिनट भी अपने दादा दादी, नाना नानी के साथ बैठते हैं?
1: यही तो समस्या है दादू। हम अक्सर सोचते हैं कि वो तो हमेशा हमारे साथ है, लेकिन सच तो ये है कि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। जरा सोचिए, जब हम छोटे थे तब वे हमारे हर सवाल का जवाब देने के लिए बैठे रहते थे, हमारे साथ खेलते थे, कहानियां सुनाते थे। अब जब उनकी बारी आई तो क्या हम उन्हें उतना ही समय दे पा रहे हैं?
0: सच में लक्ष्मी, इसलिए एक छोटा सा बदलाव करें, रोज कम से कम 15-20 मिनट उनके पास बैठें, उनसे पूछें कि उनका दिन कैसा रहा, वे कैसा सोच रहे हैं। और हाँ, मोबाइल को उस वक्त दूर रख दें ताकि उन्हें ये ना लगे कि आप सिर्फ औपचारिकता निभा रहे हैं।
1: बिल्कुल, और दूसरी चीज उनकी कहानियां सुने। दोस्तों, हमारे बुजुर्गों के पास अनुभवों का खजाना होता है। कभी कभी उनकी बातें हमें साधारण लग सकती है, लेकिन अगर हम गहराई से सोचे तो उनमें जिंदगी के कई बड़े सबक छिपे होते हैं।
0: हाँ, और ये सिर्फ सीखने की बात नहीं है, बल्कि उन्हें ये महसूस कराना भी है कि उनकी जिंदगी की घटनाएं, उनकी यादें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप उनकी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो वो भी खुश होंगे और उन्हें ये लगेगा कि वे अब भी परिवार का एक अहम हिस्सा है।
1: और सिर्फ कहानियां सुनना ही क्यों, उनके अनुभवों को सहेजिए, लिखिए, रिकॉर्ड कीजिए। कभी सोचा है कि जब हम बड़े होंगे तब ये बातें हमें कितनी सुकून देंगी?
0: बिल्कुल सही। अब तीसरी जरूरी बात, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अक्सर हम ये सोचते हैं कि जब तक कोई तकलीफ ना हो तब तक डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, लेकिन बुजुर्गों की सेहत का ख्याल रखना सिर्फ बीमार होने पर ही नहीं बल्कि नियमित रूप से भी जरूरी है।
1: हाँ, उनकी नियमित जांच करवाएं, समय पर दवाइयां दिलवाएं, और सबसे जरूरी बात, उन्हें शारीरिक रूप से सक्रिय बनाएं। हल्की सैर, योग या साधारण स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, ये सब उनके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है।
0: और मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि वे अकेलापन महसूस न करें। उनके साथ बैठें, बातें करें, उन्हें उनके दोस्तों और पुरानी परिचितों से जोड़ने की कोशिश करें।
1: और अगर संभव हो तो कोई ऐसा शौक ढूंढे जो उन्हें व्यस्त और खुश रख सके। किसी पुराने शौक को दोबारा अपनाने के लिए प्रेरित करें, जैसे बागवानी, संगीत, किताबें पढ़ना, पेंटिंग, या फिर आज के दौर के हिसाब से ऑनलाइन सीखने या लिखने की कोई नई चीज।
0: और दोस्तों, सबसे जरूरी बात, भावनात्मक सहयोग दें। उन्हें महसूस कराएं कि वो बोझ नहीं बल्कि हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
1: और इसके लिए कोई बड़ी चीज करने की जरूरत नहीं है, बस छोटी छोटी बातें, जैसे खाना खाते वक्त उनके साथ बैठना, त्योहारों पर उन्हें शामिल करना, उनके पुराने दिनों की तस्वीरें देखकर उनसे बातें करना, यही चीजें उन्हें सबसे ज्यादा खुशी देती है।
0: और सच कहूँ तो जब हम ऐसा करेंगे तो हमें भी एहसास होगा कि हम सिर्फ उन्हें नहीं बल्कि खुद को भी एक अनमोल तोहफा दे रहे हैं। उनका प्यार, उनकी दुआएं और उनके साथ बिताए गए वो सुनहरे पल जो आने वाले सालों में हमारे लिए सबसे बड़ी याद बनेगी।
1: तो दोस्तों, चलिए आज ही से शुरुआत करते हैं। अपने घर के बुजुर्गों के पास जाकर उनसे एक प्यारी सी बातचीत कीजिए, उन्हें हंसाइए, उनके साथ कुछ यादगार पल बिताइए, क्योंकि यही रिश्ते असली दौलत है और यही प्यार जिंदगी को खूबसूरत बनाता है।
0: तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम का मुख्य संदेश यही है, बुजुर्ग हमारे अभिमान है। वे सिर्फ हमारे परिवार का हिस्सा नहीं बल्कि हमारी जड़ों की मजबूती है। उनकी देखभाल करना कोई एहसान नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारा सौभाग्य है, क्योंकि अगर हम आज उनके प्यार और अनुभव की छाओं में खड़े हैं तो कल हमारे बच्चों को भी यही सीख मिलेगी कि रिश्तों की असली खूबसूरती क्या होती है।
1: और ये देखभाल सिर्फ बड़ी बड़ी चीजों से नहीं होती बल्कि छोटी छोटी बातों से होती है। एक हल्की मुस्कान, उनकी पसंद की कोई छोटी चीज लाकर देना, उन्हें दिल से सुनना, उनके पास बैठकर कुछ पुरानी बातें करना, कभी कभी सिर्फ दादी आप कैसे हैं पूछ लेना भी उनके लिए किसी बड़ी खुशी से कम नहीं होता।
0: और सच कहूँ तो हमें ये समझने की जरूरत है कि बुजुर्गों को हमारी सहानुभूति से ज्यादा हमारे साथ की जरूरत होती है। वे नहीं चाहते कि हम उनकी परेशानियों पर बस अफसोस जताएं, बल्कि चाहते हैं कि हम उनके साथ बैठें, उनसे बातें करें, उनके अनुभवों को सुने और उन्हें यही महसूस कराएं कि वो आज भी उतने ही जरूरी हैं जितने पहले थे।
1: और ये एहसास सिर्फ हमारे घर के बुजुर्गों तक सीमित नहीं होना चाहिए। अपने पड़ोस में, अपने समाज में, अपने आसपास किसी भी बुजुर्ग को देखकर अगर हम बस एक पल के लिए रुक जाए, उनसे मुस्कुराकर हालचाल पूछ ले, तो सोचिए उनके दिल को कितनी खुशी मिलेगी।
0: बिल्कुल, एक पुरानी कहावत है, घर की बरकत वहाँ बसती है जहाँ बुजुर्ग का सम्मान होता है, और ये सच भी है। उनके आशीर्वाद से ही घर में सुख शांति बनी रहती है।
1: तो दोस्तों, हम सभी के पास एक मौका है, एक सुंदर अवसर कि हम अपने घर के बुजुर्गों को, अपने समाज के बुजुर्गों को ये दिखाए कि वे हमारे लिए कितने मायने रखते हैं।
0: इस बातचीत के बाद मेरा आप सबसे एक छोटा सा निवेदन है, आज जब आप घर जाएं तो अपने दादा दादी, नाना नानी के पास बैठिए, उनसे उनकी पसंदीदा कहानी सुनिए, उनके साथ एक कप चाय पीजिए, या बस उनसे पूछिए आपकी तबीयत कैसी है। यकीन मानिए, आपके इन छोटे छोटे लम्हों से उनके चेहरे पर जो मुस्कान आएगी, वही सबसे बड़ा आशीर्वाद होगा।
1: और अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग नहीं है तो अपने पड़ोस में, अपने कॉलोनी में या अपने किसी रिश्तेदार के घर जाइए, उनके साथ कुछ पल बिताइए, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ लोग अकेले नहीं होते, उन्हें अकेला महसूस कराया जाता है।
0: और दोस्तों, इस प्यार और अपनत्व की यही भावना हमारे समाज को भी एक बेहतर जगह बनाएगी। जब हम बुजुर्गों की देखभाल करेंगे तो ये संदेश अगली पीढ़ी को भी मिलेगा कि परिवार केवल खून के रिश्ते से ही नहीं, बल्कि दिल के रिश्ते से भी चलता है।
1: और अब समय हो चला है आज के सफर को यही रोकने का, लेकिन ये बस एक रेडियो शो नहीं था, ये एक भावना थी, एक वादा था कि हम अपने बुजुर्गों के लिए हर रोज कुछ न कुछ जरूर करेंगे।
0: चलते चलते एक खूबसूरत गाना सुनते हैं जो इस एहसास को और गहरा बना देगा। सुनते रहिए और अपने अपनों के साथ प्यार और अपनापन बनाए रखें।

0: और जब तक हम फिर से मिले तब तक अपना और अपने बुजुर्गों का ख्याल रखिए, उनके लिए कुछ अच्छा कीजिए और फिर देखिए जिंदगी आपको कितनी खूबसूरत लगेगी।
1: अगले एपिसोड तक के लिए इजाजत दीजिए दोस्तों, प्यार बांटते रहिए, मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान एपिसोड 21 परिवार और समुदाय का संबंध। इस कार्यक्रम में लक्ष्मी के किरदार को आवाज दी आजय किडनी ने, भरत दद्दू के किरदार को आवाज दी भरत सोपोरी ने। इसमें आपने एक नाटिका सुनी, उसमें रिया के किरदार को आवाज दी निया जैन ने, राजीव के किरदार को आवाज दी राहुल अलियान ने। इसमें आपने एक वॉइस बर्ड सुनी जो हमारे पास भेजी थी प्रवीण पुंज जी ने अम्बाला से, उनका आभार। ये कार्यक्रम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रयोजन में कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित अटल वयो अभ्युदय योजना पर आधारित कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में सहयोग दिया आजय किडनी ने और रिकॉर्ड एडिट व निर्देशित किया भारत सोपोरी ने। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM, रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का, ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मरुस्थल की रेत हूँ मैं, सियाचिन का आसमान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं जून में जलती रेत में लेटे कहता हूँ, सर्दी आज कम है। दिसंबर की ठंड पी के कहता हूँ, गर्मी का मौसम है। मैं बर्फ में 9 दिन दफन रहकर जिंदा निकलता हूँ। सीने में अपनी सांस को टुकड़ों में भरता हूँ। -30 डिग्री में राइफल टांग के टहलने निकलता हूँ। आदमजात की औकात क्या जो मैं कुदरत से नहीं डरता। आदमजात की औकात क्या जो मैं कुदरत से नहीं डरता। मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता। मेरी दिवाली में उजाले का ख्याल तक नहीं, मेरी होली में रिश्तों का गुलाल तक नहीं। चांद हर ईद में तन्हाई का जाफा लाता है, मुझे राखी बांधने बस लिफाफा आता है। अपनी माँ के पैर छुए मुझे अरसा हो गया, अपनी माँ के पैर छुए मुझे अरसा हो गया। मेरा बाप मेरे इंतजार में बूढ़ा हो गया। मेरी बीवी सिंदूर लगा के भी लगती कवारी है। मैंने सहूलत का गला घोटा, जरूरत नकारी है। हाँ मैं निर्दयी हूँ, मैं अपने उजड़ते घरों आंगन से नहीं डरता, मगर मैं डरता हूँ। हाँ मैं भी डर जाता हूँ, मैं डरता हूँ नफरत की आग से, मजहब के चोलों से, सियासत के सांप के कातिल सपोलों से। मैं हवा में फैली अफवाह से डर जाता हूँ, मैं सैलाब गुमराह से डर जाता हूँ। मुझे डर है मेरी सरजमी को अपने उजाड़ेंगे, खून की मोहर से खुद को संवारेंगे। मैं मजबूर हूँ, कमजोर हूँ, मैं खुद से लड़ नहीं सकता। अपनों की तरफ बंदूक लेकर मैं बढ़ नहीं सकता। मैं बस बोल सकता हूँ। मैं बहरों की तरह गूंगा, तुम्हारे कान पर है हाथ मगर फिर भी मैं बोलूंगा। हजारों साल की ये सभ्यता को गौर से देखो, सुनो आवाज तुम मन की, जरा गहराई से सोचो। तुम्हें क्या सच में लगता है कोई अपना पराया है, हुआ पैदा है जो इस देश में बाहर से आया है। सभी का खून है शामिल, लगी कुर्बानियां सबकी, कि हमने हड्डियों को जोड़कर भारत बनाया है। तुम्हें अगर इश्क है इससे तो इसको दिल से अपनाओ। कोई पूछे अगर मजहब तो हिंदुस्तान बतलाओ, कोई पूछे अगर मजहब तो हिंदुस्तान बतलाओ। धन्यवाद।

0: Amore mio, dove sei tu? Hey, क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
1: गा के? अच्छा।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
1: सुनिए और सुनाइए, रेडियो विदस्ता सुनना भूलना जाइए। आपका रेडियो, आपकी अपनी आवाज, रेडियो विदस्ता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विदस्ता, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से।
2: आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 MHz पर, रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।
1: वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।
2: आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: कवच में एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो बितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए

تویچو بوزان 90.0 ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی ہوں

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है, लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्धजनों को, सीनियर सिटीजन को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारे प्रसारण सुनते रहिए

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विदस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।

सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं सिंगर नीलम नारायण। मेरा एक बहुत प्यारा वीडियो सॉन्ग मीठे मीठे इश्क की रिलीज हो चुका है, जो आप रेडियो वितस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पे सुनने जा रहे हैं। अपना स्नेह जरूर दें। धन्यवाद।

0: आपने ट्यून इन किया है सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी। आज हम आपके साथ एक संवेदनशील विषय पर बात करना चाहेंगे जो हम सबके लिए ही बहुत ही जरूरी है। ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं हरियाणा के सभी सामुदायिक रेडियो के माध्यम से, गाँव वासियों के लिए, सरपंचों के लिए, सभी हरियाणा वासियों के लिए। आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए और अपने आसपास के वातावरण को बचा के रखिए।
1: एक छोटी सी जिम्मेदारी सबको बचाए।
0: हरियाणा में खुले पड़े बोरवेल एक गंभीर और जानलेवा समस्या बन चुकी है। आए दिन मासूम बच्चे खेलते खेलते इन गहरे गड्ढों में गिर जाते हैं, जिससे न केवल उस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है बल्कि पूरे प्रशासनिक अमले की सांसें अटक जाती है। खेतों में बोरवेल को खुला छोड़ना एक प्रशासनिक लापरवाही ही नहीं है बल्कि एक गंभीर अपराध है। सुरक्षा सर्वोपरि। हरियाणा में खुले बोरवेल का खतरा और कानूनी परिणाम। खेतों में सिंचाई के लिए बोरवेल खोदना किसानों की जरूरत है, लेकिन काम पूरा होने के बाद या बोरवेल के असफल होने पर उसे खुला छोड़ देना साक्षात मौत को दावत देने जैसा है। हरियाणा के विभिन्न जिलों से ऐसे कई दर्दनाक घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जहां मासूमों को इन अंधेरे कुओं से निकालने के लिए सेना और NDRF को घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ता है। बोरवेल को बंद रखना क्यों जरूरी है, कुछ बिंदु आपके सामने रखता हूँ। पहला, मासूमों की सुरक्षा। खुले बोरवेल सबसे बड़ा खतरा बच्चों और मवेशियों यानी पशुओं के लिए होते हैं। खेल कूद के दौरान या घास चरते समय इनमें गिरने का जोखिम हमेशा बना रहता है। दूसरा, मानवीय और आर्थिक नुकसान। एक हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में लाखों रुपए और प्रशासनिक ऊर्जा खर्च होती है। सबसे बढ़कर कई बार घंटों की मशक्कत के बाद भी बच्चों की जान नहीं बचाई जा सकती है, जो कि एक कभी ना भरने वाला घाव है। तीसरा, सतर्कता ही बचाव है। बोरवेल का काम खत्म होते ही उससे लोहे के मजबूत ढक्कन यानी कैप से ढकना, चारों तरफ कंक्रीट से पक्का करना और कटीली तारों की फेंसिंग करना बेहद जरूरी है। कानूनी प्रावधान और सख्त दंड। माननीय सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों के बाद हरियाणा सरकार और पुलिस प्रशासन ने खुले बोरवेल छोड़ने वालों के खिलाफ कड़े रुख अपनाए हैं। अगर कोई अपने खेत या प्लॉट में बोरवेल खुला छोड़ता है तो उसके खिलाफ निम्नलिखित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। भारतीय न्याय संहिता BNS की धाराएं, जो पहले IPS के नाम से हम जानते थे। पहला, लापरवाही से जान जोखिम में डालना। खुले बोरवेल के कारण किसी की जान को खतरा पैदा करने पर लापरवाही का मामला दर्ज होता है। दूसरा, गैर इरादतन हत्या का मामला। यदि खुले बोरवेल में गिरने से किसी बच्चे या व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो जमीन के मालिक और बोरवेल खोदने वाली एजेंसी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या यानी कल्पेबल होमिसाइड के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। इसमें दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल और भारी जुर्माना हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार बोरवेल खोदने से कम 15 दिन पहले जिला प्रशासन यानी DC या सरपंच को लिखित सूचना देना अनिवार्य है। नियम तोड़ने पर बोरवेल को तुरंत सील कर दिया जाता है। जमीन मालिक पर भारी प्रशासनिक जुर्माना लगाया जाता है। हादसे की स्थिति में रेस्क्यू ऑपरेशन यानी बचाव कार्य का पूरा खर्च भी दोषी जमीन मालिक से वसूला जा सकता है। अब हम बात करते हैं हमारे कर्तव्य की। एक छोटी सी लापरवाही एक जिंदगी का अंत कर सकती है। यदि आपके आसपास या खेत में कोई ऐसा बोरवेल है जो इस्तेमाल में नहीं है तो उसे तुरंत मिट्टी, मलबे या कंक्रीट से ऊपर तक भर दें। अगर कोई मकान या जमीन मालिक कहने पर भी बोरवेल बंद नहीं करता है तो इसकी सूचना तुरंत अपने गांव के सरपंच, स्थानीय पुलिस या जिला प्रशासन को दें। सजग रहें और किसी मासूम की जान बचाने में अपना योगदान दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर

खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मलै दियो 7056413010 पा फोन।

0: आना।
1: तुम जाओ अंजू, मैं यहीं रहता हूँ।
0: क्यों, उनकी चोरी की है जो सामने जाने से डरते हो?
1: आखिर इंसान ही तो हूँ मैं।
0: अच्छा तो चलो, मैं तुम्हारी

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विदस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: ही दालच महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण, सुनते रहिए दिल से।
2: सुनते रहिए 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
3: पेश है कार्यक्रम सुनहरे पल। आज का कार्यक्रम गायक मुकेश पर आधारित है। पेश करेंगी RJ किरणी।

पेश है कार्यक्रम सुनहरे पल। आज हम इस कार्यक्रम का एक और अंक लेकर आपके सामने हाजिर है। सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरणी। आज हम बात करेंगे महान गायक मुकेश की, उनके अनमोल गीतों की जो आज भी दिलों को छू जाते हैं। उनके गीत सुनने के बाद पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सफर उनके गीतों के साथ।

22 जुलाई 1923 को लुधियाना के जोरावर चंद माथुर और चांद्रानी के घर जन्म हुआ मुकेश चंद माथुर का। बड़ी बहन संगीत की शिक्षा ले रही थी और मुकेश बड़े चाव से सुर के खेल में मगन हो गई। मोतीलाल के घर मुकेश ने संगीत की पारंपरिक शिक्षा लेनी शुरू कर दी, लेकिन मुकेश की दिली ख्वाहिश थी कि वो हिंदी फिल्मों में बतौर अभिनेता एंट्री मारे। 2 साल तक जब सपनों के शहर मुंबई का रुख किया तो उन्होंने बतौर एक्टर सिंगर ब्रेक मिला। 1941 में आई फिल्म निर्दोष। इंडस्ट्री में शुरुआती दौर मुश्किलों भरा था, लेकिन इस आवाज के जादूगर का जादू केएल सहगल साहब पर चल गया। मुकेश के गाने को सुन केएल सहगल भी दुविधा में पड़ गए। 40 के दशक में मुकेश का अपना प्लेबैक सिंगिंग स्टाइल था। नौशाद के साथ उनकी जुगलबंदी एक के बाद एक सुपरहिट गाने दे रही थी और उस दौर में मुकेश की आवाज में सबसे ज्यादा गीत फिल्माए गए दिलीप कुमार पर। 50 का दशक मुकेश को एक नई पहचान दे गया। उन्हें शो में राज कपूर की आवाज कहा जाने लगा। कई इंटरव्यू में खुद राज कपूर ने अपने दोस्त मुकेश के बारे में कहा है कि मैं तो बस शरीर हूँ, मेरी आत्मा तो मुकेश है। राज कपूर और मुकेश की दोस्ती स्टूडियो तक ही नहीं थी। मुश्किल दौर में राज कपूर और मुकेश हमेशा एक दूसरे की मदद को तैयार रहते थे।

60 के दशक में मुकेश का करियर अपने चरम पर था और अब मुकेश ने अपनी गायकी में नए प्रयोग शुरू कर दिए थे। उस वक्त के अभिनेताओं के मुताबिक उनकी गायकी भी बदल रही थी, जैसे कि सुनील दत्त और मनोज कुमार के लिए गाए गीत। 70 के दशक का आगाज मुकेश ने जीना यहाँ मरना यहाँ गाने से किया। उस वक्त हर बड़े स्टार की आवाज बन गए थे मुकेश। साल 1970 में मुकेश की मनोज कुमार की फिल्म पहचान के गीत के लिए दूसरा फिल्म फेयर मिला और फिर 1972 में मनोज कुमार की ही फिल्म के गाने के लिए उन्हें तीसरी बार फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। अब मुकेश ज्यादातर कल्याण जी, आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आरडी बर्मन जैसे दिग्गज संगीतकारों के साथ काम कर रहे थे। साल 1974 में फिल्म रजनीगंधा के गाने के लिए मुकेश को नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया, लेकिन नेशनल अवार्ड का मतलब 51 बरस के हो चुके मुकेश के लिए रिटायरमेंट तो कतई नहीं था। मुकेश विनोद मेहरा और फिरोज खान जैसे नए अभिनेताओं के लिए भी गा रहे थे। 70 का दशक भी मुकेश की गायकी का कायल रहा। कैसे बुलाए जा सकते हैं धर्म कर्म का एक दिन बिक जाएगा गीत, फिल्म आनंद और अमर अकबर एंथनी के वो बेहतरीन नगमे। साल 1976 में यश चोपड़ा की फिल्म कभी कभी के इस टाइटल सॉन्ग ने मुकेश को अपने करियर का चौथा फिल्म फेयर मिला और इस गाने ने उनके करियर में फिर से एक नई जान फूंक दी।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता। जारी है कार्यक्रम सुनहरे पल। साल 1969 में ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अनाड़ी ने राज कपूर को पहला फिल्म फेयर अवार्ड दिया, लेकिन कम ही लोगों को पता है कि राज कपूर के जिगरी यार मुकेश को भी अनाड़ी फिल्म के सब कुछ सीखा हमने, नासी की होशियारी गाने के लिए बेस्ट प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। शुरुआत में राज कपूर की आवाज बने मुकेश, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस छवि से बाहर निकल मुकेश ने प्लेबैक सिंगिंग का एक नया इतिहास लिखा। 40 साल लंबे करियर में अपने दौर के हर सुपरस्टार के लिए मुकेश ने गाना गाया। मुकेश ने 40 साल के लंबे करियर में लगभग 200 से अधिक फिल्मों के लिए गीत गाए। मुकेश उस जमाने के हर सुपरस्टार की आवाज बने। मुकेश की आवाज का जादू लोगों पर कैसा था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एक बार एक लड़की बीमार हो गई। वो अपनी माँ से बोली कि अगर मुकेश आकर उसे अपना गाना सुनाए तो वो ठीक हो जाएगी। डॉक्टर से इस बात का पता चलने पर मुकेश तुरंत उस लड़की से मिलने पहुँचे और गाना सुनाया।

एक बार मुकेश विदेश दौरे पर थे। उस समय देश के जाने माने संगीत निर्देशकों की जोड़ी कल्याण जी आनंद जी को एक गीत रिकॉर्ड करना था। उन्होंने सोचा कि मुकेश तो इतनी जल्दी नहीं आ सकते हैं, इसलिए फिलहाल किसी और से ही उस गीत को रिकॉर्ड करवाया जाए। तब उन्होंने उस गीत को मनहर उदास से रिकॉर्ड करवाया। जब मुकेश विदेश दौरे से लौटे तो कल्याण जी आनंद जी ने उन्हें उस गाने को फिर से रिकॉर्ड करने के लिए स्टूडियो में बुलाया। जब मनहर उदास का गाया हुआ गाना मुकेश ने सुना तो उन्होंने उस गीत को दोबारा गाने से मना कर दिया। हिंदी फिल्मों के शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर ने जब अपनी फिल्म आग से शुरुआत की तो उस फिल्म में कुछ गीत मुकेश ने भी गाए। यही से राज कपूर और मुकेश में गहरी दोस्ती हो गई थी। राज कपूर खुद कहा करते थे कि शरीर वो है तो उनकी आवाज मुकेश है। जब राज कपूर अपने बेटे ऋषि कपूर के लिए फिल्म बॉबी बना रहे थे तो राज कपूर चाहते थे कि इस फिल्म के गाने मुकेश गाए, लेकिन मुकेश ने उस फिल्म में गीत गाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि चिंटू की उम्र अभी बहुत कम है, उसके लिए एक नई आवाज की जरूरत है। मुकेश ने बताया कि वो एक गायक को जानते हैं जो इस फिल्म के गीत भली भांति गा सकता है। मुकेश ने राज कपूर को शैलेंद्र सिंह का नाम सुझाया। फिल्म के गीत शैलेंद्र सिंह ने गाए और हिट भी हुए। इसके लिए राज कपूर ने मुकेश की पारखी नजर की भी खूब तारीफ की।

एक कामयाब गायक होने के बावजूद मुकेश के बारे में लोगों की एक राय बन गई थी कि वो शास्त्रीय गीत नहीं गा सकते, लेकिन जब उन्होंने चंदन सा बदन, चंचल चितवन गाया तो शास्त्रीय गीतों पर उनकी बुराई करने वाले सभी लोगों का उन्होंने मुंह बंद कर दिया। मुकेश ने 200 से ज्यादा फिल्मों को अपनी आवाज दी। उन्होंने हर तरीके के गाने गाए, लेकिन उन्हें दर्द भरे गीतों से अधिक पहचान मिली। मुकेश ने अगर जिंदा हूँ मैं इस तरह से या मेरा दीवानापन है, ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना, दोस्त दोस्त ना रहा जैसे कई गीतों को अपनी आवाज दी। मुकेश फिल्म फेयर पुरस्कार पाने वाले पहले पुरुष गायक थे। मुकेश का निधन 27 अगस्त 1976 को अमेरिका में एक स्टेज शो के दौरान दिल का दौरा पड़ने से हुआ। उस समय वो गा रहे थे, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। मुकेश ने दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन उनकी आवाज आज भी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कहीं ना कहीं हमसे टकराती है। पल भर के लिए यादों की पोटली टटोलती है और गुनगुनाने पर मजबूर कर देती है।

दोस्तों, ये था मुकेश जी के अनमोल गीतों और उनकी दिलचस्प कहानियों से भरा एक एपिसोड। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सफर पसंद आया होगा। मुकेश जी की गीतों में वो मैजिक है जो दिल को छू जाता है। उनकी आवाज और उनके गीत हमेशा हमारे दिल के करीब होते हैं। अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक और नए एपिसोड के साथ, एक और नए सिंगर के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरे पल एपिसोड 5। आज का कार्यक्रम आधारित था गायक मुकेश पर। प्रस्तुत किया आरजे किरनी ने। रिकॉर्ड एडिट निर्देशन भारत सुपोरी। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता की पेश।

रात की मुसाफिर फिरते हैं डेरे डेरे बस्ती बस्ती, तलाशते हैं खोई हुई पहचान। ये रात भी मेहरबान होती जरूर गर कोई पुकारता, अपनी सोबत में रख कर ये जानने की कोशिश करता कि ये रिश्ता आखिर क्या कहलाता है।

बिखरती हैं तस्वीरें और भीड़ में गुम हो जाते हैं वो चेहरे जिनकी सिर्फ एक झलक पाने के लिए हम रहते हैं बेताब, और यह बेताबी दिल में चुभती है। धीरे धीरे करवटों के सायों में जिंदगी गुजर जाती है यूं ही बेवजह, और ख्वाब आंखों की पुतलियों में बस जाती है यूं ही बेवजह।

यहां अक्सर परछाइयों से रिश्ते बने हैं और सायों से लिपटते रहे हैं। उदासी में सोए हैं, उनकी यादों में खोए हैं। जब जब मौसम बदलते रहे हैं, जब जब मौसम बदलते रहे हैं, तुमको अपने तस्वीर में उतारते रहे हैं। कुछ तुम कहते गए और कुछ हम सुनते गए।

सफर है मुरादों का और अपने सजदों में खुदा को ढूंढते रहे, पर ना खुदा ही मिला और ना ही हम सफर। आरज़ुओं में शिद्दत तो थी जरूर, पर इबादत बेअसर साबित हुई। अब अपने खत्मे सफर में कुछ ऐसी देर नहीं, जो देर है तो फकत थक के बैठ जाने की।

खतरा है, आई न लाओ, हम अपनी आखिरी तस्वीर उतारेंगे। बस आज के लिए इतना ही। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा बताइएगा जरूर। चाहेंगे आपसे रुख्सत।

जी श्रोताओ, आप सुन रहे थे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का, आपका अपना स्टेशन जहां पर आप सुनते हैं हमारे कार्यक्रम सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश कर रहे थे रमेश मराठा। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम आपको पसंद आए होंगे और आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जो हमें फीडबैक भेजते हैं हमारे कार्यक्रमों के बारे में और साथ में सुझाव भी। हम उन सुझावों को अपनी टीम के साथ डिस्कस करके कोशिश करते हैं कि उन सुझावों को लागू भी करें। जो आपके सुझाव हमारे लिए आते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और हम सबको उनसे ऊर्जा मिलती है। इस समय स्टूडियो की घड़ी में समय है 9:01 और 47 सेकेंड। 90.0 FM पर ये आप सुन रहे हैं रेडियो विदस्ता और मैं हूं आपका हमनवा, आपका दोस्त, आपका होस्ट भारत सोपोरी। घड़ी की सुइयां अब रात के शांत प्रहर का इशारा कर रही है और इसी के साथ समय हो चला है आज के इस संगीतमय ज्ञानवर्धक और आत्मीय सफर को यहीं विराम देने का। सुबह की पहली किरण से लेकर इस शांत रात तक आप और हम रेडियो वितस्ता की सुरमई तरंगों के जरिए एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। दोस्तों, प्रसारण को समेटने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की तारीख यानी 6 अगस्त से जुड़ी इतिहास के पन्नों पर। नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय शांति संदेश, हिरोशिमा दिवस। 6 अगस्त 1945 को ही द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के शहर हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिराया गया था। यह दिन पूरी दुनिया में विश्व शांति और अहिंसा के प्रति प्रतिबद्धता जताने के रूप में याद किया जाता है। वंदे मातरम समाचार पत्र 1906, भारतीय संविधानता संग्राम के दौरान आज ही के दिन स्वतंत्रता सेनानी चितरंजन दास और अन्य नेताओं के ने प्रसिद्ध समाचार पत्र वंदे मातरम का प्रकाशन शुरू किया था। चिकित्सा क्षेत्र में भारत का कीर्तिमान 1986, आज ही के दिन भारत में पहले टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म हुआ था जिसने देश के चिकित्सा इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा था। भारत के पूर्व विदेश मंत्री और प्रखर वक्ता सुषमा स्वराज जी ने 6 अगस्त 2019 को दुनिया से अलविदा कहा था। आप सभी जानते हैं कि स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी का कनेक्शन और अम्बाला छावनी से रहा है। इतिहास हमें सिखाता है कि समय बदलता रहता है लेकिन प्रेम, भाईचारे और शांति का एक संदेश हमेशा अमर रहता है। आज दिन भर अपने अपने फोन कॉल्स और संदेशों से जो प्यार रेडियो वितस्ता को दिया उसके लिए मैं और मेरी पूरी टीम आपकी बेहद आभारी है। अब समय है आज के रात को विदा कहने का और कल एक नई उम्मीद, नई सुबह के साथ फिर से मिलने का वादा। चलते चलते वितस्ता की पावन धारा को याद करते हुए ये कुछ पंक्तियां आप सभी के लिए लाया हूं रोज की तरह। आज की पंक्तियां यूं हैं, सुरों की इस नदी को हम यूं ही बहते निभाएंगे, सुरों की इस नदी को हम यूं ही बहते निभाएंगे, वितस्ता की कल कल धारा से नए नगमे सुनाएंगे। रात का ये खामोश पर्दा कल फिर नया सवेरा लाएगा, रात का ये खामोश पर्दा कल फिर नया सवेरा लाएगा, रेडियो वितस्ता का हर सुर आपके दिल को महकाएगा। जी हां दोस्तों, रेडियो वितस्ता का हर सुर आपके दिल को महकाएगा। ये सभी पंक्तियां आप सभी के नाम। और जाने से पहले आपको कल के कार्यक्रमों का विवरण देता हूं जल्दी जल्दी। कल 7 अगस्त 2026 शुक्रवार को जो कार्यक्रम आपके लिए लाए हैं वो इस प्रकार है। सभा की शुरुआत होगी सुबह 5:58 पर, वंदे मातरम से होगी शुरुआत और लाएंगे आपके लिए एक सुविचार।
और पहली आवाज में आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन करेंगे पंचांग के साथ। 6 बजे आप सुनेंगे भक्ति संगीत और कल शुक्रवार है, कल आप सुनेंगे शब्द और गुरबानी भी। 7:05 पर कार्यक्रम होगा रेट्रो हिट्स एपिसोड 5, शीर्षक होगा यादें, पेश करेंगे आरजे किरणी। और शुक्रवार को 8:30 आप सुनते हैं रंगमंच की और कल फिल्म नायक पर आपको जो बात कहेंगे मानव मेहरा इसी विषय पर। 9:30 सरगम एपिसोड 6 होगा और 10:10 पर फिल्मी किसे एपिसोड 7, शीर्षक होगा फिल्म होगी चलती का नाम गाड़ी, पेश करेंगे राहुल अलियान। संगीत की सभा जारी रहेगी और कल शुक्रवार के दिन के 2 बजे आपको इंतजार रहता है आपकी फरमाइश का, जो कार्यक्रम आपकी फरमाइशों पर आधारित होता है, जो आप हमें पूरे देश भर से भेजते हैं और हमारी कोशिश होती है कि हम आपकी फरमाइशों को पूरा करें और आपके दिल की बात सभी श्रोताओं तक पहुंचाएं। कल के कार्यक्रम में एक खास बात है, कल का कार्यक्रम हमारे साथ अभी अभी जुड़ी हमारी जो एक इंटर्न है अनु, कल भारत सोपोरी और अनु इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे और मैं आप सभी श्रोताओं को जरूर कहूंगा आप अपना प्यार इस नई आवाज को दें और अपना फीडबैक भी इनके लिए जरूर हमें भेजें। 6 बजे भक्ति संगीत, 6:30 शाम गजल और 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सुनहरे पल एपिसोड 7 और पेश करेंगे आरजे किरणी। और 8:30 हर दिन की तरह कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश करेंगे रमेश मराठा, कल की कड़ी है वो चुप क्यों थे। ये था कल के कार्यक्रमों का विवरण और आप सभी को ये जानकारी जरूर देना चाहूंगा कि ये सारी जानकारी जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, इसको कंपाइल किया है अनु ने। आप अपना फीडबैक हमें भेज सकते हैं हमारे स्टूडियो के नंबर पर जो है 7056413010, नंबर एक बार फिर 7056413010। इसी हसी मोड पर आज 6 अगस्त 2026 के इस प्रसारण को मैं भारत सोपोरी यहीं देता हूं विराम। आप सब अपना ख्याल रखिए, मीठी नींद सोइएगा और खूबसूरत सपने देखिएगा। कल सुबह फिर मुलाकात होगी 90.0 MHz पर जो FM रेडियो वितस्ता है आपके जीवन का प्रवाह। तो कल सुबह तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।